0: ଦିନଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉ ପ୍ରେମରେ, ଦିନଟିକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର ପ୍ରେମରେ, ଏବଂ ଦିନଟିର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟୁ ପ୍ରେମରେ। ପ୍ରେମ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତିର ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ। ଆକାଶବାଣୀ ଭବାନୀ ପାଟଣା, ସମୟ ସକାଳ
1: ବାଣୀ ସମାଚାର କେ ସାଥ ମୈଁ ଜୟା ଭାରତୀ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के समक्ष अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को

नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली स्थित पूसा परिसर में पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस अवसर पर वे देश भर से आए लगभग 17,000 वृक्ष मित्रों से संवाद करेंगे। श्री सिंह वृक्ष मित्रों के साथ पूसा परिसर में वृक्षारोपण अभियान में भी हिस्सा लेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार एक विशाल अभियान में आज 35 करोड़ पौधे लगाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ करेंगे। वे एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और आरकेबीके के पास ताल रिंग रोड के किनारे पौधे लगाएंगे। मध्य प्रदेश में आज मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 38वीं मासिक किस्त जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 1,25,00,000 से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित करेंगे। इसके अतिरिक्त 83 करोड़ रुपए से अधिक की 16 नई लोक कल्याणकारी परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2026 के अंतर्गत नियमों का उल्लंघन करने के आरोपों से संबंधित कई उपभोक्ता शिकायतों के बाद स्विगी इंस्टामार्ट को 9 नोटिस जारी किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में FSSAI ने कहा है कि स्विगी को विस्तृत स्पष्टीकरण और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है और ऐसा न करने पर उचित कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। उपभोक्ता शिकायतों में स्विगी इंस्टामार्ट पर उत्पादों के निर्धारित अवधि समाप्त होने, खराब, सड़े, दूषित और अन्य प्रकार के असुरक्षित खाद्य उत्पादों की आपूर्ति का आरोप लगाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को अपने पक्ष में करने के जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के आरोप की आलोचना की है। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि श्री

0: निर्धारित अवधि समाप्त होने, खराब, सड़े, दूषित और अन्य प्रकार के असुरक्षित खाद्य उत्पादों की आपूर्ति का आरोप लगाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को अपने पक्ष में करने के जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के आरोप की आलोचना की है। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि श्री अब्दुल्ला का यह बयान अत्यंत गैर जिम्मेदाराना है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट कल वियतनाम के फुकवोक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मृतकों में 13 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मृतकों की सूची साझा करते हुए कहा कि ये नाम वियतनामी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। दूतावास के अनुसार मृतकों से 10 तमिलनाडु से और 3 आंध्र प्रदेश से जबकि 2 केरल से थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जलडमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद अमेरिका ने ईरान पर नए हमले शुरू कर दिए हैं। अमेरिकी सेना ने कहा है कि ये हमले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर किए गए। इस बीच ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को अगली सूचना तक बंद कर दिया है। और खेलों में इंग्लैंड ने कल रात साउथैम्प्टन में 5वें और अंतिम टी20 क्रिकेट मैच में भारत को 56 रन से हराकर श्रृंखला 4-0 से जीत ली है। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने आज तड़के फ्लोरिडा के मियामी स्टेडियम में नॉर्वे को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। स्पेन और फ्रांस पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुके हैं। उधर लंदन में कल रात विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने चेक गणराज्य की करोलिना मुकोवा को हराकर महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया। महिला डबल्स के फाइनल में आज गुओ हान्यो और लुइसा स्टेफेनी की जोड़ी का मुकाबला क्रिस्टीना माल्डिनोविच और ग्रेबेलिया डाब्रोवस्की की जोड़ी से होगा। यह मैच शाम 5:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय सुभद्रा रामचंद्रन। Prime Minister Narendra Modi has concluded his historic 2-day visit to New Zealand and departed for India. The visit, the first by an Indian Prime Minister to New Zealand in over 4 decades, gave a major boost to bilateral ties. During the visit, Mr. Modi held talks with his New Zealand counterpart, Christopher Luxon. The two leaders witnessed the exchange of 5 memoranda of understanding in areas including defence, tourism, sports, disaster management, dairy and animal husbandry. A major highlight of the visit was the community event at Auckland Spark Arena, attended by over 10,000 members of the Indian diaspora. Addressing the gathering, Mr. Modi stated that the future of India and New Zealand is intertwined and the bilateral trade agreement will accelerate India's journey towards a developed nation.
2: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
1: Vietnamese Prime Minister Lee Minh Hoan has ordered a probe into the speedboat tragedy near Phu Quoc Island that claimed the lives of 15 Indian tourists. According to a statement issued by Consulate General of Vietnam in Mumbai, Prime Minister Hoan asked authorities to identify shortcomings, determine causes of the accident and implement corrective measures to prevent similar incidents in the future. The Vietnamese Prime Minister also directed authorities to take strict legal action against anyone found to have violated regulations that may have caused the accident. The tragic incident occurred yesterday when a speedboat carrying 36 people, including 4 crew members, flipped after reportedly being hit by a sudden wave off Rut Ngoi Islet.

आकाशवाणी संबलपुर जुहार आंचलिक खबर पढ़ुचन सुप्रीति मिश्र। राज्य सरकार 76 सरकारी प्राथमिक विद्यालय के उच्च प्राथमिक विद्यालय करिछन। विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंडों सूचना अनुसार पश्चिम ओडिशार नुआपड़ार 6, बलांगीर

0: अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी न्यूजीलैण्डदेशस्य स्वीयाम् ऐतिहासिकीं द्विदिवसीययात्रां सम्पन्नं कृत्वा भारतं प्रति प्रस्थितवान्। विगतचत्वारिंशद्वर्षेभ्यः अनन्तरम् एषा कस्यापि भारतीय प्रधानमन्त्रिणः प्रथमा न्यूजीलैण्डयात्रा आसीत्, या उभयदेशयोः द्विपक्षीयसम्बन्धान् नूतनां गतिम् अददात्। यात्रा समये प्रधानमन्त्री मोदी न्यूजीलैंड देशस्य प्रधानमन्त्रिणा क्रिस्टोफर लक्सन इत्यनेन सह द्विपक्षीय वार्ताम् अकरोत्। उभौ नेतारौ रक्षा, पर्यटन, क्रीडा, पद प्रबन्धन, दुग्ध व्यवसाय, पशुपालनादिषु क्षेत्रेषु पञ्च ज्ञापन पत्राणाम् आदान प्रदानं कृतवन्तौ। अस्याः यात्रायाः प्रमुखाकर्षणेषु अन्यतमः कार्यक्रमः ऑकलैंड नगरस्य स्पार्क अरीना इत्यत्र आयोजितः प्रवासी भारतीय समुदायस्य समागमः आसीत्, यस्मिन् 10,000+ प्रवासी भारतीयाः समुपस्थिताः आसन्। समागमं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री मोदी अवदत् यत् भारत न्यूजीलैंड देशयोः भविष्यं परस्परं सम्बद्धमस्ति।
1: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
0: प्रधानमन्त्री मोदी सस्नेह स्वागताय न्यूजीलैंड देशस्य प्रधानमन्त्रिणं क्रिस्टोफर लक्सन इत्येतं प्रति कृतज्ञतां प्रकटितवान्। रक्षामन्त्री राजनाथ

0: राजनाथसिंहः उक्तवान् यत् भारतं पारम्परिकरक्षासामर्थ्यस्य उन्नतप्रौद्योगिकीनां च सुदृढीकरणेन दृढम् आत्मनिर्भरं भविष्यस्य आह्वानेभ्यश्च अनुकूलं रक्षाबलं निर्माति। असौ एतत् विशाखापत्तनं नगरे भारतीय नौसेनायाः पूर्वी नौसेनादले प्रोजेक्ट 17A इत्येतस्य अन्तर्गते स्वदेशे निर्मितस्य षष्ठयुद्धपोतस्य INS महेन्द्रगिरिः इत्येतस्य समावेशनसमारोहं सम्बोधयन् अवदत्। रक्षामन्त्री अवदत् यत् INS महेन्द्रगिरिः इत्येतस्य नौसेनायां सम्मेलनं भारतस्य सामुद्रिक सामर्थ्यस्य स्वदेशी रक्षा क्षमतायाश्च सुदृढीकरणदिशि अन्यत् महत्वपूर्णं सोपानमस्ति। पश्चिमबङ्गालप्रशासनेन राज्याय UCC इति समाननागरिकसंहितायाः प्रारूपविधेयकस्य परीक्षार्थं नवसदस्यात्मिका समितिः निर्मिता। अस्मिन् विषये अधिसूचना पूर्वमेव प्रकाशिता अस्ति। सेवानिवृत्तन्यायमूर्तिः रञ्जना प्रकाशदेसाई समितेः अध्यक्षत्वेन नियुक्ता। मेघालयस्य पूर्वराज्यपालः तथागत रॉयः अपि समितेः सदस्येषु अन्यतमः अस्ति। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरणेन खाद्य सुरक्षा मानकाधिनियमस्य 2006 इत्यस्य उल्लंघन सम्बद्धानां बहूनां उपभोक्तृ परिवादानां अनन्तरं स्विगी इंस्टामार्ट इत्यस्मै नव अधिसूचनाः प्रेषिताः। फीफा विश्व चषक प्रतिस्पर्धायाम् अद्य प्रातः फ्लोरिडा इत्यत्र मियामी क्रीडा प्रांगणे इंग्लैंड देशेन नॉर्वे देशं 2-1 इत्यंकांतरालेन पराजित्य उपान्त्यचक्रे प्रविष्टम्। वियतनाम देशस्य प्रधानमंत्री ले मिन हुन इत्येषः फूक्वक द्वीपस्य समीपे जाता स्पीड बोट इत्येतस्याः दुर्घटनायाः अन्वेषणाय आदेशं प्रदत्तवान्। अस्याम् दुर्घटनायां 15 भारतीय पर्यटकाः निधनमुपगताः इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी भवानी पटना समय सकाळ 7:00। श्रोता बंधु शुणियंतु आज आम केन्द्रु प्रचारित होगा कार्यक्रम संपर्क में सूचना चलित अधिवेशन सकाळ 7:25 शुणिबे कुनि कुनि पिलांक पई कार्यक्रम सरग फुल सकाळ 8:30 प्रचार करिबो श्रीक्षेत्र माधुरी एथरे शुणिबे रथ उपरे ठाकुर मानक नित्य भोग उपस्थापना विश्वनाथ सामंतराय प्रयोजना प्रदीप्त श्रीचंदन सहायता गोलक बिहारी महापात्र चिरंजीवी राउतराय ओडिया भक्ति गीत शुणिबे सकाळ 8:45 सकाळ 9:00 रहिछि हिंदी कथाचित्रर गीत पूर्वाह्न 10:10 शुणिबे स्थानीय खबर ओ सुमधुर गीतर कार्यक्रम खोला छरका द्वितीय अधिवेशन दिन 12:30 शुणिबे सुगम संगीत शिल्पी मानले शशांक शेखर महापात्र वेणुधर सुबुद्धि प्रणति मिश्र रघुनाथ पाणिग्राही जगन्नाथ पाणिग्राही इंद्राणी मिश्र एवं जोगेन्द्र महापात्र चाषर कथा रही दिन 9:20। ओडिया आलबम्र गीत शुणिपारे दिन 9:20। हिंदी कथाचित्रर गीत रही दिन 2:45। अपराह्न 5:00 प्रचार करिबो विशेष कार्यक्रम उदय भारत युववाणी कार्यक्रम शुणिबे अपराह्न 5:30। आदिवासी गीत क्रम शुणिबे देशिया कंध गीत शिल्पी कस्तूरी माछी एवं साथी राति 6:30। जिला हलचल क्रम शुणिबे नयागढ़ जिला संपर्क राति 7:25। आकाशवाणी कटक केन्द्ररु चाषबास कार्यक्रम शुणिबे राति 7:30। राति 8:00 प्रचार करिबो महाप्रभु जगन्नाथ रथयात्रा पूर्व प्रस्तुति संपर्क पुरी CDM साक्षात्कार आकाशवाणी कटक केन्द्ररु चिठी पाइचु कार्यक्रम शुणिबे राति 8:15। राति 8:30 स्पोर्ट्स स्कैन 9:15 स्पॉटलाइट राति 9:30 अखिल भारतीय हिंदी रूपक एवं राति 10:00 शुणिबे रवि बासरिया संगीत सभा। ए समस्त कार्यक्रम रिलिक्रे प्रचार करिबो आकाशवाणी दिल्ली केन्द्ररु। आकाशवाणी भवानीपाटना श्रोता बंधु परवर्ती प्रसारण रिले करी प्रचार करुचु आंचलिक संवाद आमर स्वास्थ्य एवं ओडिया संवाद शुणिपारे आकाशवाणी कटक केन्द्ररु अल्पक्षण मध्यरे।

0: सुंदर की गाइल ने कि अच्छा कहिल तुमने तो 8 क्लास रे पाठ पढ़ु छ मां खाली पोड़ो पिठा बने देले खाई दो छ ने कि हां पोड़ो पिठा रा रेसिपी जणा छि ना ने कहा को जणा छि कह कहा को भी जणा नै ए माने घरे किछि भी रोसे वसे करू ना नै ए मैगी बनाउ छ ना नै मैगी बने के खाई दो छ हां पोड़ो हले कोनो कोनो हबो कहिल समस्ते
1: मु टीचर हेबी
2: मु डॉक्टर हेबी मु पुलिस हेबी पुलिस
0: अच्छा रेडियो सुनुछ ना नै तमनकर सहित कथा है कि बहुत भल लागिला आ हमर कुनी कुनी भाई भणी मनने मध्य सुनि कि बहुत खुशी हेथिबे धन्यवाद
3: धन्यवाद।

0: बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है। आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं। अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें। जलाशयों से गाद निकालें। अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की तीन देशों की यात्रा संपन्न। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ विस्तृत वार्ता के बाद स्वदेश रवाना। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। वियतनाम सरकार ने स्पीड बोट दुर्घटना की जांच के आदेश दिए। दुर्घटना में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत। अमेरिका ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जल डमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद ईरान पर नए हमले शुरू किए। ईरान ने जल मार्ग को अगली सूचना तक किया बंद। मौसम विभाग ने अगले चार दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से हराकर फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश किया और लिंडा नोसकोवा ने कैरोलिना मुकोवा को हराकर अपना पहला विंबलडन टेनिस खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। इस दौरान श्री मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ व्यापक बातचीत की। भारत और न्यूजीलैंड ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया है। इस दौरान रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन और डेयरी तथा पशुपालन सहित कई प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। ऑकलैंड में सामुदायिक कार्यक्रम में भारतीय मूल के 10,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। श्री मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और न्यूजीलैंड का भविष्य आपस में जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को विश्वसनीय मित्र बताते हुए न्यूजीलैंड की प्रगति में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की भी उन्होंने प्रशंसा की। श्री मोदी ने श्री लक्सन के शानदार आतिथ्य के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से भारत न्यूजीलैंड संबंधों में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। श्री मोदी ने 40 वर्ष बाद भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा के बारे में कहा कि अगली यात्रा में इतना समय नहीं लगेगा।
0: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है। इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है। पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
2: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की तीन देशों की यात्रा के महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं। प्रधानमंत्री मोदी की तीन देशों की यात्रा के दौरान भारत में

तरह बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का

0: प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की तीन देशों की यात्रा के महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं। प्रधानमंत्री मोदी की तीन देशों की यात्रा के दौरान भारत ने इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ व्यापार, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, नवाचार, शिक्षा और लोगों के बीच आपसी संबंधों जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार किया है। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली स्थित पूसा परिसर में पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस अवसर पर वे देश भर से आए लगभग 17,000 वृक्ष मित्रों से संवाद करेंगे। श्री सिंह वृक्ष मित्रों के साथ पूसा परिसर में वृक्षारोपण अभियान में भी हिस्सा लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की जन केंद्रित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि गृहमंत्री कार्यक्रम के दौरान अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में महत्वाकांक्षी सामूहिक पौधारोपण अभियान की शुरुआत भी करेंगे।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने संसदीय क्षेत्र को देश में सबसे हरा भरा बनाने के लिए महत्वाकांक्षी गांधीनगर हरियाली लोकसभा अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, जिसके तहत इस साल गांधीनगर संसदीय क्षेत्र में 1.25 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। इस अभियान के तहत वन विभाग अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में वन कवच मॉडल के माध्यम से लगभग 60 लाख स्वदेशी पौधे लगाएगा, जो त्वरित पर्यावरण सुधार के लिए जापानी मियावाकी पद्धति का गुजराती स्वदेशी संस्करण है। अपने दौरे के आखिरी दिन श्री शाह कल गांधीनगर में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी परिसर में 11वीं इंटरपोल डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट ग्रुप बैठक और पहली अंतर्राष्ट्रीय अन्वेषक अपराध प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वे देहगांव में नवनिर्मित एपीएमसी सब्जी मंडी का भी लोकार्पण करेंगे। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: उत्तर प्रदेश सरकार व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत आज 35 करोड़ पौधे लगाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ करेंगे। वे एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और आरकेबीके के पास ताल रिंग रोड के किनारे पौधे लगाएंगे। एक रिपोर्ट।
2: 27 विभागों के समन्वय से चलाए जाने वाले इस विशाल वृक्षारोपण अभियान में वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग सर्वाधिक 15 करोड़ 50 लाख पौधारोपण करेगा। ग्राम्य विकास विभाग 10 करोड़, कृषि विभाग 3 करोड़ 25 लाख, उद्यान विभाग 1 करोड़ 50 लाख और पंचायती राज विभाग 1 करोड़ 22 लाख पौधे लगाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे भी 5.5 लाख पौधे लगेंगे। महाअभियान 2026 में इस वर्ष समरस वन, समृद्धि वन, कृषि वन, ऊर्जा वन, कपि वन समेत अनेक नवीन वन तैयार किए जाएंगे। महर्षि चरक औषधि वन की शुरुआत 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस पर की गई है। इस अभियान का प्रमुख हिस्सा मिशन छाया, अविरल धारा पौधारोपण, सहजन भंडारा और आम भंडारा भी होगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: विभिन्न राजनीतिक दलों के विधायकों से चर्चा की। इससे पहले समिति के अध्यक्ष और सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि एक साथ चुनाव कराने से सुशासन को बढ़ावा मिलेगा, चुनावी खर्च कम होगा और बार बार होने वाले चुनावों से होने वाले प्रशासनिक व्यवधान में कमी आएगी। समिति अब अपने राष्ट्रव्यापी परामर्श अभियान के अगले चरण में लखनऊ का दौरा करेगी। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हुन ने फुकवोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। इस हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। ये हादसा उस समय हुआ जब 36 लोगों को लेकर जा रही स्पीड बोट फुकवोक द्वीप के पास रटनगोवाई टापू के निकट अचानक ऊंची लहरों की चपेट में आकर पलट गई। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने मृतकों की सूची जारी की है। इनमें 10 लोग तमिलनाडु, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरल के रहने वाले थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जल डमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद अमरीका ने ईरान पर नए हमले शुरू कर दिए हैं। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका की सेना ने कहा है कि हमले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर किए गए हैं। इस बीच ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को अगली सूचना तक बंद कर दिया है। ईरान की नौसेना ने कहा कि इस इलाके में अमेरिका का दखल खत्म होने तक किसी भी जहाज को इस रास्ते से निकलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नौसेना ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य की इस घटना को लेकर अमेरिका की किसी भी कार्रवाई का कड़ा जवाब दिया जाएगा। अमेरिका ईरान से सार्वजनिक रूप से होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर हमला नहीं करने का आश्वासन चाहता है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि तनाव के बावजूद ईरान के साथ बातचीत जारी रहेगी। ईरान ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य उसके नियंत्रण में ही रहेगा और इस मार्ग से गुजरने वाले जहाजों को शुल्क देना होगा। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही के लिए 2 अलग अलग रास्तों का प्रस्ताव दिया है, लेकिन ईरान ने इस तरह के प्रस्ताव को पहले ही खारिज कर दिया था। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिष्ठित पार्श्व गायिका एस जानकी अम्मा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एस जानकी अम्मा का निधन संगीत और संस्कृति जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ मुकेश कुमार बल।
3: फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने आज तड़के फ्लोरिडा में नॉर्वे को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इंग्लैंड के जूड बेलिंगहम ने अतिरिक्त समय में 2 गोल करके इंग्लैंड को जीत दिलाई। इंग्लैंड तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। स्पेन और फ्रांस पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुके हैं। उधर लंदन में कल रात विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने चेक गणराज्य की करोलिना मुकोवा को 6-2, 5-7, 6-3 से हराकर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। इस बीच पुरुष सिंगल्स के फाइनल में आज विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी यैनिक सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार आज रात 8:30 से खेला जाएगा। महिला डबल्स के फाइनल में आज 10वीं वरीयता प्राप्त गुओ हान्यू और क्रिस्टीना म्लाडेनोविच की जोड़ी का मुकाबला दूसरी वरीयता प्राप्त गैब्रियला डब्रोवस्की और लुइसा स्टेफनी की जोड़ी से होगा। ये मैच शाम 5:30 से शुरू होगा। और इंग्लैंड ने कल रात साउथहैम्पटन में 5वें और अंतिम टी20 क्रिकेट मैच में भारत को 56 रन से हराकर श्रृंखला 4-0 से अपने नाम कर ली है।
1: और अभी अभी प्राप्त समाचार के अनुसार अमेरिका के कंसास में जारी क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड 1-1 गोल से बराबरी पर हैं। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। इनमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश और ओडिशा शामिल हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
4: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाई है। नव भारत टाइम्स ने प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को प्राथमिकता देते हुए लिखा है, आतंकवाद पर बनाएंगे ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप, प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के पीएम के बीच सहमति। पंजाब केसरी ने INS महेंद्रगिरी के जलावतरण पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान को प्रमुखता दी है, भविष्य के युद्ध सिर्फ AI से नहीं सैनिकों के दम पर जीते जाएंगे। जनसत्ता ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा का बयान दिया है, चढ़ावा चोरी कलंक, व्यवस्था में जल्द सुधार। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर बरसात में बेहाल होते शहरों पर विश्लेषण दिया।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित प्रस्तावित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति ने गोवा में अपनी 2 दिवसीय परामर्श प्रक्रिया पूरी कर ली है। इस दौरान समिति ने राज्य सरकार, राजनीतिक दलों, विधायकों, संवैधानिक विशेषज्ञों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, नागरिक समाज के प्रतिनिधियों और मीडिया से विचार विमर्श किया। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
2: पहले दिन समिति ने गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, संवैधानिक विशेषज्ञों, राज्य निर्वाचन आयोग तथा गोवा विश्वविद्यालय के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। दूसरे और अंतिम दिन कल समिति ने गोवा विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर गणेश गांवकर, विपक्ष के नेता यूरिया लेमाव तथा

0: है। हर बरसात में देश के शहरों में लोग जलभराव और उससे जुड़ी समस्याओं से जूझते हैं। इसके बाद भी नगर निकायों का काम करने का तौर तरीका नहीं बदला है। अखबार ने लिखा है कि अब यह जरूरी हो गया है कि संसद में एक विशेष सत्र बुलाकर बिगड़ते शहरीकरण को संवारने के लिए कोई सार्थक बहस की जाए। दैनिक भास्कर ने राष्ट्रीय राजधानी के मौसम का मिजाज दिया है, कमजोर पड़ा मॉनसून, अब एक हफ्ते झेलनी पड़ेगी गर्मी।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 3 देशों की यात्रा संपन्न। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। वियतनाम सरकार ने स्पीड बोट दुर्घटना की जांच के आदेश दिए, दुर्घटना में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत। अमेरिका ने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जल डमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद ईरान पर नए हमले शुरू किए। ईरान ने जल मार्ग को अगली सूचना तक किया बंद। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से हराकर फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Naresh Mago. The headlines. Prime Minister Narendra Modi concludes his 3-nation tour of Indonesia, Australia and New Zealand. Departs for India after holding extensive talks with New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. Vietnam government orders probe into speedboat tragedy that killed 15 Indian tourists. US launches new round of strikes against Iran after IRGC forces attack container ship transiting Strait of Hormuz. Iranian Navy closes the vital sea corridor until further notice. IMD forecasts heavy rainfall across northern and eastern parts of the country for next 4 days. England beats Norway 2-1 to reach FIFA World Cup semi-finals. And Linda Noskova beats Carolina Muchova to win first Wimbledon tennis title. Prime Minister Narendra Modi has concluded his 3-nation tour of Indonesia, Australia and New Zealand and departed for India after holding extensive talks with New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. India and New Zealand elevated their bilateral ties to a strategic partnership and signed several agreements and memoranda of understanding across key sectors. These include defense, tourism, sports, disaster management, and dairy and animal husbandry sectors. A major highlight of the visit was the community event at Auckland's Spark Arena, attended by over 10,000 members of the Indian diaspora. Addressing the gathering, Mr. Modi stated that the future of India and New Zealand is intertwined and the bilateral trade agreement will accelerate India's journey towards a developed nation.
3: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
2: On the occasion, Prime Minister Luxon described India as a trusted friend, praised the contribution of the Indian community to New Zealand's progress, and appreciated Prime Minister Modi's leadership. Prime Minister Modi thanked Prime Minister Luxon for his warm hospitality and said the visit had opened a new chapter in India-New Zealand relations.
3: 40 साल के बाद कोई भारतीय पीएम न्यूजीलैंड की धरती पर आया है, ये मेरा सौभाग्य है। मैं न्यूजीलैंड के सभी निवासियों के लिए, आप सभी लोगों के लिए 140 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाएं लेकर आया हूं। साथियों, प्रधानमंत्री के रूप में भले ही मेरा पहला न्यूजीलैंड दौरा है, लेकिन 25-30 साल पहले जब मैं किसी सरकार में भी हिस्सा नहीं था, सार्वजनिक जीवन में मुझे कोई जानता नहीं था, तब भी मुझे यहाँ

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारत।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर

0: मन की बात प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
1: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
0: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
1: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
2: श्रोता बंधु आपण शुणुचंती केतोटी हिंदी कथाचित्रर गीत आकाशवाणी भवानीपाटणा केन्द्ररु। परवर्ती गीत निजो गाइड चलचित्ररु किशोर कुमार एवं लता मंगेशको कंठरे शुणन्तु। सरेन्द्रको गीत रचनाको संगीतरे सजाइचंती एस टी वर्मा।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। इस दौरान श्री मोदी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ व्यापक बातचीत की। भारत और न्यूजीलैंड ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया है। इस दौरान रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन और डेयरी तथा पशुपालन सहित कई प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इस दौरान श्री मोदी ने ऑकलैंड में सामुदायिक कार्यक्रम में भारतीय मूल के 10,000 से अधिक लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड का भविष्य आपस में जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय व्यापार समझौता भारत के विकसित राष्ट्र बनने की यात्रा को गति प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को विश्वसनीय मित्र बताते हुए न्यूजीलैंड की प्रगति में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की। गृहमंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की जनकेंद्रित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे और शिलान्यास करेंगे। गृहमंत्री कार्यक्रम के दौरान अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में महत्वाकांक्षी सामूहिक पौधारोपण अभियान की भी शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में एक विशाल अभियान के अंतर्गत आज 35 करोड़ पौधे लगाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ करेंगे। वे एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और आरकेबीके के पास ताल रिंग रोड के किनारे पौधे लगाएंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश में आज मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 38वीं मासिक किस्त जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव भिंड जिले के लहार से राज्य स्तरीय कार्यक्रम में 1,25,00,000 से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित करेंगे। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को नवम्बर 2025 से प्रत्येक महीने 1,500 रुपए दिए जा रहे हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित प्रस्तावित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त सदस्य समिति ने गोवा में 2 दिन की चर्चा पूरी कर ली है। इस दौरान समिति ने राज्य सरकार, राजनीतिक दलों, विधायकों, संविधान विशेषज्ञों, सरकारी उपक्रमों, सामाजिक प्रतिनिधियों और मीडिया के साथ बातचीत की। वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हुंग ने फूक वोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। इस हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। ये हादसा 36 लोगों को लेकर जा रही स्पीड बोट फूक वोक द्वीप के पास अचानक ऊंची लहर की चपेट में आकर पलटने से हुआ। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने मृतकों की सूची जारी की है। इनमें से 10 लोग तमिलनाडु, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरलम के रहने वाले थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में अगले 4 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इनमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ओडिशा शामिल हैं। विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम और बिहार में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और खेलों में फीफा विश्व कप में अमेरिका के कंसास में खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना ने स्विट्जरलैंड को 3-1 से हरा दिया है। इसके साथ ही अर्जेंटीना की टीम प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। इससे पहले आज सुबह फ्लोरिडा में खेले गए एक और क्वार्टर फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से हरा

किया और सेमीफाइनल में जगह बना ली। इंग्लैंड तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। स्पेन और फ्रांस पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुके हैं। अब सेमीफाइनल में बृहस्पतिवार को अर्जेंटीना का सामना इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: ପ୍ରଚାରକଲୁ କେତୋଟି ସୁଗମ ସଙ୍ଗୀତ ଆକାଶବାଣୀ ଭବାନୀପାଟଣା। ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନ ଗୋଟାଏ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ଓ ପରେ ପରେ ଶୁଣିବେ ଇଂରାଜୀରେ ସମ୍ବାଦ। ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पूरी कर आज नई दिल्ली लौट आए। 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी ने 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया का दौरा किया। इस दौरान श्री मोदी ने राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और दोनों देशों के बीच साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ 3rd भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। यात्रा के 3rd और अंतिम चरण में प्रधानमंत्री ने 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड के ऑकलैंड का दौरा किया। वहां उन्होंने प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारत हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक मजबूत

0: और विश्वसनीय शक्ति के रूप में उभरा है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत के रणनीतिक संबंध और मजबूत हुए हैं।
1: हम एक स्टेबिलाइजिंग फोर्स बन के इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन में आज उभर पाए हैं, इसी को प्रधानमंत्री एक साथ लेके आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने परिश्रम से, अपने स्टेट्समैनशिप से अपने पॉलिसी को भारत में लागू करके बाकी देशों को दिखाया और सभी देशों ने एक्सेप्ट किया कि यस, लेट दिस बी द फ्रेमवर्क, लेट इंडिया डिसाइड द फ्रेमवर्क। हम इस फ्रेमवर्क पे एक लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन, आप सोचिए ये कितनी बड़ी जीत है।
0: श्री संबित पात्रा ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त छूट के साथ भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एक मुश्त अवसर प्रदान किया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि ये योजना 6 महीने की अवधि तक लागू रहेगी। मंत्रालय के अनुसार पात्र प्रतिष्ठानों को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को ईमेल के माध्यम से औपचारिक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। गुजरात में गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की जन केंद्रित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। श्री शाह ने अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में पौधारोपण अभियान का भी शुभारंभ किया। इधर उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत आज 35 करोड़ पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। वियतनाम के प्रधानमंत्री ने ले मिन हुन ने फूकोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। इस हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। इनमें से 10 लोग तमिलनाडु, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरल के रहने वाले थे। विदेश मंत्रालय ने वर्ष 2017 में जारी यमन यात्रा संबंधी अधिसूचना वापस ले ली है। ये अधिसूचना यमन में गृह युद्ध और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के कारण भारतीय नागरिकों की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के लिए जारी की गई थी। कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने खाड़ी देश को कूटनीति, मीडिया और निवेश के क्षेत्र में प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया था। शेख हमद ने क्षेत्रीय परंपरा को तोड़ते हुए 2013 में स्वेच्छा से अपने पुत्र को सत्ता सौंपने से पहले 18 वर्षों तक कतर पर शासन किया। टेनिस में आज विंबलडन के पुरुष सिंगल्स और महिला डबल्स के फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। पुरुष सिंगल्स के फाइनल में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी यानिक सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 8:30 बजे शुरू होगा। महिला डबल्स के फाइनल में चीन की गो हानयू और फ्रांस की क्रिस्टीना म्लादेनोवक की जोड़ी का मुकाबला कनाडा की गैब्रिएला ड्राबोवस्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी की जोड़ी से होगा। ये मैच शाम 5:30 बजे से खेला जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहला सेमीफाइनल बुधवार को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Sunil Verma. Prime Minister Narendra Modi has returned to New Delhi after concluding his 6-day successful visit to Indonesia, Australia and New Zealand. In the first leg of his 3-nation tour, Mr. Modi visited Indonesia from 6th to 8th of this month at the invitation of President Prabowo Subianto. During this visit, the Prime Minister held bilateral discussions with the Indonesian President and reviewed the progress made in the partnership. In the second leg of his tour, the Prime Minister travelled to Melbourne, Australia. Mr. Modi participated in the 3rd India-Australia Annual Summit with Australian Prime Minister Anthony Albanese. During his visit, Prime Minister Modi also participated in the India-Australia CEOs Forum, where he addressed a gathering of top business leaders from both countries. on the 3rd and

0: आकाशवाणी विज्ञापन कम खर्च सारा राज्य में खेले गुंजरण
1: आपण मैंने कार्यक्रम शुणुंट आकाशवाणी भवानीपाटन केन्द्र एथर प्रचार करुचु केतोटी ओडिया आलबम गीत कार्यक्रम प्रथम शिल्पी समीर गीत रचना करिछंती देवीदत्त महांती।

0: Stadium. The losing teams will play the third place playoff on July the 19th in Miami. The India Meteorological Department has issued an orange alert for heavy to very heavy rainfall over Assam, Meghalaya, Bihar, Sub-Himalayan, West Bengal and Sikkim today. It has predicted heavy rainfall conditions at isolated places over Arunachal Pradesh, Chhattisgarh, East Uttar Pradesh, Gangetic West Bengal and Himachal Pradesh today. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India condemns attack on commercial vessel GFS Galaxy off coast of Oman. 10 Indians rescued, one reported missing. New Delhi expresses concern over continuing attacks on commercial shipping in the region. Prime Minister Narendra Modi returns to New Delhi after concluding several agreements during his visit to Indonesia, Australia and New Zealand. Home Minister Amit Shah inaugurates and lays foundation stones of several development projects in Ahmedabad. Employees Provident Fund Organization introduces a six-month amnesty scheme for establishments operating Private Provident Fund Trust to regularize their status. In Wimbledon, Jannik Sinner to lock horns with Alexander Zverev for men's singles title this evening. And in FIFA World Cup, England and Argentina enter semi-finals. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत जीएफएस गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की। 10 भारतीय सुरक्षित बचाए गए, एक लापता। क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर भारत ने चिंता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे, इस दौरान कई समझौते हुए। गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निजी भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने के लिए 6 महीने की माफी योजना शुरू की। विंबलडन टेनिस में आज शाम पुरुष सिंगल्स के फाइनल मुकाबले में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर ज्वेरेव होंगे आमने सामने। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड और अर्जेंटीना ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत ने आज ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत जीएफएस गैलेक्सी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक अब भी लापता है। मंत्रालय ने बताया कि ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर चिंता जताई है। मंत्रालय ने तनाव तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए जारी वार्ता को जल्द पूरा करने का आह्वान किया है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप क्षेत्र के समुद्री मार्गों पर निर्बाध और सुरक्षित नौवहन तथा व्यापार जल्द से जल्द बहाल किए जाने की बात कही है। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर से हवाई हमले किए हैं। ये हमले ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर हमला किए जाने के बाद किए गए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि हमलों में ईरान के लगभग 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड ने अगली सूचना तक होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की है और चेतावनी दी है कि यदि अमरीकी हमले जारी रहे तो वो भी जवाबी कार्रवाई करेगा। विदेश मंत्रालय ने वर्ष 2017 में जारी यमन यात्रा संबंधी अधिसूचना वापस ले ली है। ये अधिसूचना यमन में गृहयुद्ध और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के कारण भारतीय नागरिकों की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के लिए जारी की गई थी। हालांकि मंत्रालय ने परामर्श जारी कर भारतीय नागरिकों को यमन की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआई

0: एयर ऐप और वेबसाइट www.newzoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की सफल यात्रा पूरी कर स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी की इस महत्वपूर्ण यात्रा की प्रमुख उपलब्धियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 3 देशों के दौरे के पहले चरण में इंडोनेशिया का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और दोनों देशों के बीच चल रहे सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों देशों ने रक्षा, दुर्लभ खनिज, कृषि, समुद्री सुरक्षा और अंतरिक्ष जैसे कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्ण से सम्मानित किया गया। इस दौरे के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, जहां उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ 3rd भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस यात्रा के दौरान ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम की आपूर्ति का रास्ता भी साफ हुआ। साथ ही ऑस्ट्रेलिया सुपर ने भारत के नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 50 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश की घोषणा की। अपने दौरे के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत की घोषणा की। इसके अलावा दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक आपसी व्यापार को दुगना करने का लक्ष्य तय किया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारत हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक मजबूत और विश्वसनीय शक्ति के रूप में उभरा है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत के रणनीतिक संबंध और मजबूत हुए हैं।
2: हम एक स्टेबिलाइजिंग फोर्स बनके इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन में आज उभर पाए हैं, इसी को प्रधानमंत्री एक साथ लेके आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने परिश्रम से, अपने स्टेट्समैनशिप से अपने पॉलिसी को भारत में लागू करके बाकी देशों को दिखाया और सभी देशों ने एक्सेप्ट किया कि यस, लेट दिस बी द फ्रेमवर्क, लेट इंडिया डिसाइड द फ्रेमवर्क। हम इस फ्रेमवर्क पे एक लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन, आप सोचिए ये कितनी बड़ी जीत है।
0: श्री संबित पात्रा ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने बताया कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया है। इसके तहत दोनों देशों के युद्धपोत एक दूसरे के डॉक पर सर्विसिंग करा सकेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत छूट प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चलाने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एक मुश्त अवसर दिया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बताया कि ये योजना 6 महीने तक लागू रहेगी। इसका लाभ उन प्रतिष्ठानों को मिलेगा जो आयकर अधिनियम 1961 के तहत मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट का संचालन कर रहे हैं। ऐसे ट्रस्ट में कर्मचारी भविष्य निधि का प्रबंधन सीधे ईपीएफओ के बजाय संबंधित प्रतिष्ठान अपने निजी ट्रस्ट के माध्यम से करता है।
3: ईपीएफओ की एमनेस्ट योजना मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चला रहे पात्र संस्थानों को नियमित करने का एक और अवसर प्रदान करती है। इस योजना के तहत वे अपने ट्रस्ट की स्थिति को पिछली तारीख से नियमित करा सकते हैं। इसका उद्देश्य ऐसे ट्रस्टों को एक समान वैधानिक व्यवस्था के दायरे में लाना और सभी लागू कानूनी प्रावधानों के पालन को सुनिश्चित करना है। कर्मचारियों के लिए यह योजना उनके नियोक्ता के भविष्य निधि ट्रस्ट की कानूनी स्थिति को लेकर अधिक स्पष्टता और भरोसा प्रदान करेगी। योजना के तहत निर्धारित राहत का लाभ तभी मिलेगा जब सदस्यों के खातों में निर्धारित अवधि के दौरान अंशदान जमा किया गया हो और उस पर ईपीएफओ की वैधानिक ब्याज दर के बराबर या उससे अधिक ब्याज दिया गया हो। छूट प्राप्त पीएफ ट्रस्टों को नियमित किए जाने से भविष्य निधि लाभों का प्रबंधन अधिक सरल, सुव्यवस्थित और कानूनी प्रावधानों के अनुरूप होने की भी उम्मीद है। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: योजना का लाभ लेने के लिए पात्र प्रतिष्ठानों को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में ईमेल के माध्यम से औपचारिक आवेदन भेजना होगा। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत 35 करोड़ पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सतत भविष्य सुनिश्चित करने तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने को लेकर चिंतित है।
4: वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा, वनों की कटाई, प्रदूषण और

0: प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में 405 करोड़ रुपए की लागत वाली नगर निगम की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से अधिक पौधे लगाए गए। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: गृहमंत्री ने बरगद, पीपल, जामुन और अर्जुन जैसे स्वदेशी पौधे लगाने पर जोर दिया, जिससे शहर के तापमान में 5% की कमी आएगी और भावी पीढ़ियों के लिए एक रहने योग्य पर्यावरण सुनिश्चित होगा। उन्होंने पर्यावरण स्थिरता में योगदान देने के लिए हर घर और आवासीय सोसाइटी से सोलर रूफटॉप अपनाने का भी आह्वान किया। इस पर्यावरण अभियान के तहत आज 101 नए ऑक्सीजन पार्क का भी उद्घाटन किया गया और उनकी जानकारी देने वाली एक विशेष ई बुक भी जारी की गई। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए AMTS और BRTS के बेड़े में आज 333 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की गई, जिससे अहमदाबाद BRTS देश का पहला 100% इलेक्ट्रिक और शून्य प्रदूषण वाला बेड़ा बन गया है। अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज कहा कि देश के समाज सुधारकों की महान विरासत का सम्मान करना और उसे बनाए रखना हर नागरिक का कर्तव्य है। श्री राधाकृष्णन ने नई दिल्ली के द्वारका में मन्नम इंटरनेशनल सेंटर में मन्नम स्मृति मंडपम का उद्घाटन के अवसर पर ये बात कही। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत एक पौधा भी लगाया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने आज बताया कि फू क्वोक द्वीप के निकट कल हुई नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन सिटी ले जाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने कहा कि वहां आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को भारत लाया जाएगा। इससे पहले दूतावास ने बताया था कि नौका दुर्घटना में घायल 15 भारतीयों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और वे भारत लौट रहे हैं। दक्षिण की कोकिला के रूप में प्रसिद्ध रही गायिका एस जानकी अम्मा का कर्नाटक के मैसूर में एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे 88 वर्ष की थी।
3: छह दशक से अधिक लंबे अपने संगीत सफर में एस जानकी ने कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी सहित कई भाषाओं में लगभग 48,000 गीतों को अपनी आवाज दी। अपनी बहुमुखी गायकी और भावपूर्ण प्रस्तुति के कारण उन्हें नाइटिंगेल ऑफ द साउथ के नाम से जाना जाता है। एस जानकी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका के लिए 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुए। इसके अलावा उन्हें 33 राज्य फिल्म पुरस्कार भी मिले। वर्ष 2013 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इस जानकी के निधन से भारतीय फिल्म संगीत जगत ने एक ऐसी महान स्वर साधिका को खो दिया है जिनकी आवाज आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा और विरासत बनी रहेगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एस जानकी अम्मा का निधन संगीत और संस्कृति जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने खाड़ी देश को कूटनीति, मीडिया और निवेश के क्षेत्र में प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया था। उन्होंने अल जजीरा समाचार नेटवर्क की भी शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के पूर्व अमीर शेख के निधन पर दुख व्यक्त किया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
4: फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहला सेमीफाइनल बुधवार को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे से शुरू होगा। दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड ने नॉर्वे को अतिरिक्त समय में 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की, जबकि अर्जेंटीना ने आज सुबह स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराया। दोनों सेमीफाइनल मुकाबलों के विजेता 20 जुलाई को न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। सेमीफाइनल की दोनों पराजित टीमें 19 जुलाई को मियामी में तीसरे स्थान के लिए प्लेऑफ खेलेंगी। टेनिस में आज विंबलडन के पुरुष सिंगल्स और महिला डबल्स के फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। पुरुष सिंगल्स के फाइनल में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी यानिक सिनर का मुकाबला जर्मनी

0: के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा। महिला डबल्स के फाइनल में चीन की गुओ हनयू और फ्रांस की क्रिस्टिना म्लादेनोविक की जोड़ी का मुकाबला कनाडा की ग्रेबियेला ट्रोवास्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी की जोड़ी से होगा। ये मैच शाम 5:30 बजे खेला जाएगा।
1: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गंगा के मैदानी इलाकों, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर आज तेज वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, पंजाब और उत्तराखंड में भी आज इसी तरह की स्थिति बने रहने का अनुमान है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की। 10 भारतीय सुरक्षित बचाए गए, एक लापता। क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर भारत ने चिंता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। इस दौरान कई समझौते हुए। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निजी भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने के लिए 6 महीने की माफी योजना की शुरुआत की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ଏତେବେଳେ ଯାଇ ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଥିଲେ। ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ। ଆକାଶବାଣୀ କଟକ ସମୟ 2:30। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିପାରିବେ ଟିକିଏ ପରେ।
3: ବନ୍ୟା ହେଉ ବା ମହାବାତ୍ୟା, ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ
4: ଗାଁରୁ ସହର ଯାଏ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ
3: ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ
4: ଜୁଆଙ୍ଗ ଓ ସାନ୍ତାଳଙ୍କ ଠାରୁ ବଣ୍ଡା ଏବଂ କୋୟାଙ୍କ ଯାଏ ସବୁରି ଭାଷାରେ
3: କେବଳ ଆକାଶବାଣୀ।

0: ପ୍ରଚାର କଲୁ କେତୋଟି ହିନ୍ଦୀ କଥାଚିତ୍ରର ଗୀତ। ଆକାଶବାଣୀ ଭବାନୀପାଟଣା, ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ।
1: समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत ने आज ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को अब तक सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक अब भी लापता है। मंत्रालय ने बताया कि ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर चिंता जताई है। मंत्रालय ने तनाव तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए जारी वार्ता को जल्द पूरा करने का आह्वान किया है। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर से हवाई हमले किए हैं। ये हमले ईरान द्वारा हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर हमला किए जाने के बाद किए गए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि हमलों में ईरान के लगभग 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने अगली सूचना तक हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की सफल यात्रा पूरी कर स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी की इस महत्वपूर्ण यात्रा की प्रमुख उपलब्धियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 3 देशों के दौरे के पहले चरण में इंडोनेशिया का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और दोनों देशों के बीच चल रहे सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों देशों ने रक्षा, दुर्लभ खनिज, कृषि, समुद्री सुरक्षा और अंतरिक्ष जैसे कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्ण से सम्मानित किया गया। इस दौरे के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, जहां उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ 3रे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस यात्रा के दौरान ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम की आपूर्ति का रास्ता भी साफ हुआ। साथ ही ऑस्ट्रेलिया सुपर ने भारत के नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 50 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश की घोषणा की। अपने दौरे के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत की घोषणा की। इसके अलावा दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक आपसी व्यापार को दुगना करने का लक्ष्य तय किया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत 35 करोड़ पौधे लगाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में 405 करोड़ रुपए की लागत वाली नगर निगम की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1 करोड़ 25 लाख से अधिक पौधे लगाए गए।

मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सतत भविष्य सुनिश्चित करने तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने को लेकर चिंतित है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत छूट प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चलाने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एक मुश्त अवसर दिया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बताया कि ये योजना 6 महीने तक लागू रहेगी। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने आज बताया कि फू क्वोक द्वीप के निकट कल हुई नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन सिटी ले जाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने कहा कि वहां आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को भारत लाया जाएगा। टेनिस में आज विंबलडन के पुरुष सिंगल्स और महिला डबल्स के फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। पुरुष सिंगल्स के फाइनल में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 8:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं महाराष्ट्र में मनोरंजन की पारंपरिक विधा तमाशा के लिए अपना योगदान देने वाले श्री रघुवीर खेड़कर के साथ खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं अंकिता आपटे।
2: नमस्कार, मैं अंकिता आपटे और आज हमारे साथ है विख्यात तमाशा कलाकार रघुवीर खेड़कर। आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। रघुवीर जी, तमाशा की विरासत जो है आपकी, वो अपने परिवार से आपको मिली है, अपने माता पिता दोनों ही तमाशा कलाकार थे, तो इस परंपरा के बारे में हमें बताइए और आपके बचपन के बारे में भी बताइए।
3: वैसा तो मेरा जन्म तमाशे में ही हुआ है। बम्बई का न्यू हनुमान थिएटर लालबाग, यहाँ 1961 में मेरा जन्म हुआ और दूसरे दिन मेरे को थिएटर में लाया गया। तो पांचवा दिन जो था वो हमारे मराठी में उसको पांचवी बोलते हैं, बालाची पांचवी, वो मेरा पांचवा दिन था। उसी दिन मेरे पिताजी के दोस्त माधवराव नगरकर, इनका तमाशा था, उनका वगनाट्य नाग प्रसन्न रघुवीर, इसका ओपनिंग था। तो ओपनिंग में उन्होंने वो जो बच्चा बनाते थे डॉल का, वो बच्चा लिए बगैर मेरे को जो लेके गए स्टेज पे, जन्म के पांचवे दिन मैं स्टेज पे गया। ये मेरा बचपन का पहला एंट्री था। बाद में 1964 में मेरे पिताजी का देहांत हुआ, उसके बाद माँ अकेली गिर गई। हम चार बच्चे थे, उसके माँ बाप थे, उसका भाई था, उसकी बहन थी, इनको सबको पोषना उसको बहुत मुश्किल हो रहा था। तो उन्होंने तमाशा निकाला, जो मेरे शिक्षण के लिए मेरे पिताजी ने पैसे रखे थे 10,000 रुपए, वो 10,000 निकाल के तुकाराम खेड़कर यांचे चिरंजीव रघुवीर खेड़कर सर कांताबाई सातारकर तमाशा मंडल संगमनेर में ये तमाशे का उद्घाटन हुआ और मैं 9 साल का लड़का स्टेज पे आया। वो मेरी दूसरी और पहली एंट्री।
2: तो आपकी पहली एंट्री के बारे में तो आपने बताया कि जन्म के बाद पांचवे दिन आप स्टेज पे थे, और ये जो दूसरी एंट्री थी जब आपने स्टेज पे पहली बार कदम रखा, तो वो अनुभव आपको याद है?
3: हाँ, मेरी माँ का बहुत बुरा हाल था, पैसे नहीं थे और हम चार बच्चों को पोसना माँ के लिए बहुत बड़ी बात थी। तो माँ ने 1 साल दूसरे तमाशे में नौकरी की, जो आनंद लोकनाट्य करके।

0: है वो तमाशे में, और फिर पैसे मिलने के बाद ये तमाशा निकाला। तो हमने सोचा हम चारों बहन की माँ को साथ देना चाहिए, तो मेरी बड़ी बहन अनीता ताई ये स्टेज पे नाचने लगी, दूसरी बहन अलका ताई ये स्टेज पे गाने लगी, फिर मैं भी स्टेज पे नाचने लगा। और हमारी छोटी बहन थी मंदा, वो बहुत ही छोटी थी, 4 साल की थी, वो कुछ कर नहीं पाती थी, तो उसको लेके हम साथ में घूमने थे। और पहले ऐसा था सब कुटुम्ब साथ में रहने का तमाशे में, पहले ऐसे घर बीर नहीं थे हमारे, सिखाने पढ़ाने को जगह नहीं थी, तो हम सब साथ में, हमारे सब की चौथी चौथी यत्ता हो गई है।
1: रघुवीर जी, आपने सोंगाड़िया ये पात्र अपने खुद के लिए क्यों चुना, आपके इसके पीछे क्या सोच थी?
0: इसके पीछे ऐसे सोच थी, सोंगाड़िया तो मेरे पिताजी थे वो हीरो थे, मेरी माँ हीरोइन, और उनका जो स्टेज पे लगातार उनके जो प्रोग्राम होते थे, तो दर्शक जब प्रोग्राम छूटने के बाद उनको मिलने को आते थे, वाह बेहतरीन काम किया आज आपने, बहुत बेहतरीन हुआ, बहुत अच्छा हुआ, तो मैं सुनने का, तो मैंने बड़ा होके मैं अगर हीरो का काम करूं तो भी लोग बोलेंगे करता है काम अच्छा मगर बाप के सरीका नहीं, इसलिए मैंने वो काम छोड़ के एक कॉमेडी पसंद की और मैं सोंगाड़िया बन गया।
1: रघुवीर जी, ये जो आप सारे पात्रों के बारे में हमें बता रहे हैं, सोंगाड़िया, हीरो, हीरोइन, ये सब तमाशा में कैसा दिखता है ये हमें बताइए ना।
0: बहुत भारी, तमाशा में वगनाट्य होता है, वगनाट्य बोले तो नाटक, नाटक में संगीत नहीं रहता, गाने नहीं रहते, और वगनाट्य में संगीत गाने रहते हैं, ये फर्क है नाटक में और वगनाट्य में। तो वगनाट्य में ऐसी स्टोरी होनी थी, पहले छत्रपति शिवाजी महाराज की स्टोरी होनी थी, राजा हरिचंद्र की स्टोरी होनी थी, नवनाथ महाराज की स्टोरी होनी थी, सत्यवान सावित्री वो स्टोरी होनी थी, आई चकाली बोले तो माँ का कलेजा ये स्टोरी होनी थी, तो बहुत भारी था वो। और वो अभिनय ऐसे थे पुराने जमाने के लोगों की, सिनेमा में जैसे लोग देखते वैसा ही अभिनय स्टेज पे होता था, और मैं खुद वो देख के रोता था, ऐसा उनका अभिनय था।
1: रघुवीर जी, आपने अपना पूरा जीवन एक तमाशा कलाकार के रूप में रंगमंच पे बिताया है, तो ये सफर कैसा रहा बचपन से लेके अब तक सोंगाड़िया के पात्र को निभाना भी, और उसके इर्द गिर्द जो तमाशा आपने देखा रंगमंच से देखा वो कैसा है?
0: रंगमंच में मैंने तो तमाशे के 4 रूप बदलते हुए देखे है, पहला तमाशा जो पौराणिक वगनाट्य पे चलता था, दूसरा तमाशा ऐतिहासिक वगनाट्य पे चला, तीसरा तमाशा रजवाड़ी वगनाट्य पे चला, चौथा तमाशा सामाजिक वगनाट्य पे चला, तो ऐसे 4 रूप मैंने तमाशे के देखे। मेरा जो दौर रहा तमाशे का वो बहुत अच्छा दौर था, मुझे बचपन से ही पब्लिक ने चुना था, मेरे कॉमेडी को बहुत पब्लिक हंसती थी, अगर मैं गंभीर भूमिका करूँ फिर भी लोग हंसते थे, तो वो दौर बहुत अच्छा था।
1: रघुवीर जी, अभी आपने जिक्र किया कि सामाजिक कथाएं, सामाजिक मुद्दे तमाशा के रंगमंच से उठाना, ये भी एक दौर आपने देखा, और हाँ। ये आपने भी किया कि जो मुद्दे हाँ। सामाजिक मुद्दे आपको लगा कि इनकी बातें होनी चाहिए वो आपने आपके तमाशे के माध्यम से भी दिखाई, तो ये क्यों लगा आपको कि तमाशा जैसे माध्यम का उपयोग इन मुद्दों को उठाने के लिए किया जा सकता है और किया जाना चाहिए?
0: तमाशा बोले तो प्रबोधन का काम है, जब शिवाजी महाराज गनी में कावा करते थे उसमें शायरी होती थी, और शायरी के पेट में से ही तमाशा निकला, तो पहले से ही यानी कि स्वतंत्र पूर्व काल से ही तमाशा प्रबोधन करते आया है, तमाशा ने सिखाया है ऐसी बात मत करो जो तुम्हारे जान पे उठेगी, ऐसी बात करो कि जो 10 जाने बचाएंगी, ये तमाशे का उद्देश्य था, तमाशा पढ़ाने वाला था, अनपढ़ लोगों को तमाचा सिखाने का, तुम सीखो प्रौढ़ शिक्षण चालू है, प्रौढ़ शिक्षण सीखो तो अक्षर तुमको आने चाहिए, ऐसा तमाचा ने सिखा है। और ये सामाजिक मुद्दे इसलिए तेज पे आए कि भाई ये लोगों ने जैसे गलत बात करी है, ये गलत बात तुमसे ना होना, क्योंकि तुम समाज के घटक हो, समाज सुधारक हो, तो समाज सुधारने होना और पूरे पृथ्वी पे महाराष्ट्र का और भारत का नाम रोशन होने होना, इसलिए हम सामाजिक वगनाट्य करते थे।
1: और रघुवीर जी, ये जो सामाजिक वगनाट्य के प्रयोग आपने किए, तो लोगों की प्रतिक्रिया कैसे होती थी, क्योंकि तमाशा का हमारे मन में जो चित्र होता है उससे ये थोड़ा सा हटके है, तो लोगों ने इसे कैसे लिया?
0: तमाशा लोगों की जान था, जब सिनेमा नहीं था, जब नाटक नहीं था, जब मोबाइल नहीं था, जब टीवी नहीं था, जब तमाशा ही तमाशा था, तो लोग जिस दिन तमाशा आने वाला है उस दिन से दिन भर तमाशा का रास्ता देखते वो ग्राउंड पे खड़े रहते थे, तमाशा कब आएगा, तमाशा कब आएगा। और उनकी कर्मणुक वही थी, वो किसान लोग जो थे, जो अपन किसान बोलते हैं, किसानों का कला का जो चाहता प्रकार है वो तमाशा है।
1: तो आप ये कहना चाहते

0: लगता है कि जो ये सामाजिक वगनाट्य के प्रयोग भी थे वो भी लोगों ने उतने ही अप्रिशिएट किए जितना वो और तरीके के तमाशा वगनाट्य को करते थे। आपने अभी जिक्र किया रघुवीर जी कि इंटरनेट है, टीवी है, ओटीटी है, और ये दौर ही इन सभी चीजों का है, और हम देखते हैं कि तमाशा जैसी लोक कलाएं जो है उनका महत्व कम हो रहा है, तो आप इस मुद्दे को किस तरह से देखते हैं, आपको क्या लगता है?
1: देखिए, अभी शहरों के जो लोग हैं उनको ग्रामीण में क्या हो रहा है ये मालूम नहीं है, क्योंकि टीवी और मोबाइल में वो पूरे जा चुके हैं अंदर, और टीवी में जा चुके हैं, मोबाइल में जा चुके हैं, उनको बाहर देखने को टाइम नहीं है। तो आज भी तमाशे को पब्लिक उतना ही चाहती है जो 50 साल पहले चाहती, धूप रहती है उसमें भी लोग सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक लोग तमाशा देते हैं। गाय इसी नहीं होता, फैन नहीं होता, खाली तंबू लगाया होता है छाव के लिए, और उस छाव में बैठकर लोग आज भी इनको तमाशा देखते हैं।
0: तमाशा का भविष्य आपको कैसे दिखता है?
1: तमाशा का भविष्य जो है, जैसे नाटक सुधर गया, जैसे सिनेमा सुधर गया है, वैसा तमाशा भी सुधरने लगा है। जब तक महाराष्ट्रीयन पब्लिक है जब तक तमाशा जिंदा रहेगा, ये तो बात सूर्य नारायण जब तक है जब तक चलती ही रहेगी, खाली उसमें बदलाव आए।
0: कैसे बदलाव की आप बात कर रहे हैं रघुवीर जी, किस तरह के बदलाव?
1: इंटरनेट पे तमाशा जाएगा और आधुनिक यंत्र ना तमाशे में आएगी, आधुनिक वाद्य तमाशे में आएगा, आधुनिक गाना आएगा, ये सब जो अभी चल रहा है ये तमाशे में अभी आ चुका है। हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है वो इलेक्ट्रॉनिक हो चुके हैं, पहले इंस्ट्रूमेंट हाथ से बजाते थे, अब इंस्ट्रूमेंट बटन से बजाए जाते हैं, ऐसा सब बदलाव आ चुका है और आगे भी ऐसा बदलाव आएगा।
0: रघुवीर जी, जैसा मैंने पहले भी कहा कि तमाशा कलाकार को पहली बार पद्मश्री से सम्मानित किया जाने वाला है, तो इस पहल से कौन कौन से सकारात्मक बदलाव तमाशा के क्षेत्र में आपको लगता है कि हो सकते हैं?
1: जब से ये पुकार हुई है 25 जानेवारी को, ये रघुवीर खेड़कर को पद्मश्री मिला है, जब से तमाशे में जो लोग आते हैं वो बहुत शांति से तमाशा सुन रहे हैं। मेरा तमाशा तो दो रोज लोग आते हैं तो बहुत शांति से सुन रहे हैं, बहुत शांति से देख रहे हैं, तालियां सिक्का बजाते हैं, जाते टाइम हाथवारे करते हैं, टाटा बाय बाय करते हैं, हमारी वीडियोज निकालते हैं, हमारे साथ फोटो निकालते हैं, हमको धन्यवाद करते हैं। ये सब बदलाव आ चुका है 25 जानेवारी के बाद।
0: रघुवीर जी, आपकी इस लंबी यात्रा को जब आप अब इस मकाम से पीछे मुड़ के देखते हैं, जो जिंदगी आपने जी, जो सोंगाड़िया के इतने सारे पात्र आपने निभाए इतने सारे वगनाट्यों में, तो क्या लगता है कैसी रही है ये जर्नी अब तक?
1: बहुत बेहतरीन रही है।
0: रघुवीर जी, तमाशा कलाकारों को देखने का एक नजरिया थोड़ा सा अलग होता है।
1: आज अपन फिल्म देखते हैं, अपन रील देखते हैं, तो बच्चों के अंग पे पूरा बदन ढका हुआ नहीं होता है, फिर भी उनको लोग अभिनेत्री बोलते हैं, और ये जो तमाचे की नर्तिका रहती है ये नौवारी साड़ी में पूरी ढके रहती है, पूरी सजी रहती है, उसको लोग तमाशे वाली बोलते हैं। ये समाज है, अभी वो समाज जैसा चलेगा उसके पीछे जाना पड़ेगा।
0: तो इस फ्रंट पे भी आप कुछ बदलाव देख रहे हैं रघुवीर जी, कि अगर कुछ नजरिया बदल रहा है लोगों का या वो वही है?
1: नहीं नहीं, बदला है, एक महीने में पूरा नजरिया बदला है। मैंने हमारे सारे लोग जो है हमारे साथी तमाशे वाले उनको भी पूछा, भाई अपना ये पुरस्कार जाहिर होने के बाद तुम्हारे में क्या बदलाव आया, तुम्हारा प्रेक्षक क्या कर रहा है, तो बोल रहे बहुत अच्छे तमाशा देख रहे हैं, पहले सर के धींगाना भिंगाना बहुत करते नहीं, और भीड़ होती थी, वो भीड़ में मारामारी होती थी और कुछ होता था, वैसा कुछ करते नहीं, अभी बहुत अच्छा तमाशा देख रहे हैं, इतना बदलाव तो जरूर आया है ये पद्मश्री से।
0: रघुवीर जी, आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी कि आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है जो आपके क्षेत्र में आना चाहती है, या आप ही के क्षेत्र से उनके माँ बाप है और जो बच्चे हैं वो बाहर निकलना चाहते हैं, ये भी कभी कभी होता है, तो
1: होता है।
0: इस क्षेत्र में आना जो चाहते हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप?
1: जरूर आइए, क्योंकि ये अभी इसमें पद्मश्री मिल रहा है, अगर वो यहाँ आके करियर करे तो कुछ हो सकता है। अभी तमाशा कुछ ग्रामीण रहा नहीं, तमाशा भी बदल चुका है, पूरा तमाशा बदला हुआ है, तमाशे में रोजगार भी अच्छे मिलते हैं, पैसा रोजगार तमाशे में मिल रहा है, और कला मिल रही है, सबसे ज्यादा तो कला मिल रही है। कला एक ऐसी चीज है मरे हुए आदमी को जिंदा रखती है, ऐसी कला है, कला के साथ अपनी उपजीविका भी वो याद कर सकते है और अपना नाम भी बहुत कर सकते हैं। यही मैं आने वाली नई जनरेशन को एक बात बता देना चाहता हूँ कि आप जरूर तमाशे में भाग ले, इसका सुने ना, आप जरूर तमाशे में भाग ले, आप बड़े कलाकार हो जाए, बड़े बड़े पुरस्कारों के माननीय बन जाए, ऐसा मुझे लगा है।
0: रघुवीर जी, बहुत बहुत बधाई।

0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी महाराष्ट्र में मनोरंजन की पारंपरिक विधा तमाशा के लिए अपना योगदान देने वाले श्री रघुवीर खेड़कर के साथ खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रही थी अंकिता आप्टे। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।

0: हिताधिकारी माने विशेष करि महिला माने किपरि लाभवान होउछन्ति से विषय रे दुई पद कहंतु।
1: कलाहांडी जिल्ला रे हमरो पाखा पाखी 21,600 स्वयं सहायक गोष्ठी अछंती जाकी पाखा पाखी 2,20,000 रु अधिक महिला माने सेतिरे अंतर्भुक्त अछंती। मिशन शक्ति विभाग साधारणत स्वयं सहायक गोष्ठी मानकु नेकी कार्य करे। स्वयं सहायक गोष्ठी कहिले पाखापाखि आमे सर्वनिम्न 10 गोटी महिला जो माने कि निज आखपाखरे रहुथिबे मानसिक स्तरें समभावापन्न पाखापाखि आमे व्यवस्था करू कि सम आर्थिक स्थिति मध्ये सेमानक करतिबो 18 रु 65 वर्ष बयस होइतिबो। एभळी 10 गोटी महिला को नेकि स्वयं सहायक गोष्ठीर गठन होइथाय। एही महिला माने जेबे स्वयं सहायक गोष्ठी गठन करंती सेमाने गोटे बैंक रे गोटे जमा खाता तयारी करंती आउ तांकर सख्य हिसाब रे प्रत्येक मेंबर को जेति कि तां सक्षम अछि से हिसाब से माने गोटे मासिक जमा टंका संग्रह करंती और सेटा को प्रत्येक मेंबर को जमा टंका टिक से माने तांकर से बैंक रो पासबुक रे डिपॉजिट करंती। तो सेमान को प्रथमे जे गोटे स्वयं सहायक गोष्ठी गठन हुए सरकार तरफ रु तांको गोटे सेड मनी बा ताको आमे कहूचे प्रथम जोटा आवर्तन पांठी हिसाब से तांको दिया जाए ताहार व्यवहार करके और जमा पूंजी जहाँ थाए जमा खाता रे पैसा थाए बैंक रे तांकर संजोगीकरण करा जाए। बैंक संजोगीकरण करिवार उद्देश्य या मिशन शक्ति विभाग तरफ रु आमर मिशन शक्ति ऋण जो अच्छी सेटारे 10 लक्ष पर्यंत महिला स्वयं सहायक गोष्ठी माने जो ऋण नहीं था तार शुद्ध फेरस्त कार्यक्रम जहाँ कि आम इंटरेस्ट सबमिशन कहचु तहार व्यवस्था अच्छी जदि सठिक समय एसएचजी ग्रुप टी गोटे लोन नहीं ठीक भाव में पैठ कर मासिक किस्ती अच्छी तार सुध दे तार समस्त शुद्ध अर्थ जोटा बैंक नहीं था सरकार ताकू जमा खाता स्वयं सहायक गोष्ठी जमा खाता को फेरस्त करती। तो एटा गोटे भल प्लाटफर्म लगे कि जो टंकाटा से माने फेरी पाँच सेविंग्स को जाए जमा पूंजी को जाए आउ जो बैंक रु ऋण निर्देश व्यवहार कर सामूहिक भाव में गोष्ठी आकार इंडिविजुअली से किसी व्यवसाय लगाती
0: मूलधन को मूलधन रही जहाँ से माने लाभ पाइले से व्यक्तिगत खर्च से व्यवहार करें स्वावलंबी हो पारे। तो किपर भाव अर्थराशि दौंती बैंक जेहेतु दौची से अर्थ से ठीक भाव परिचालन करुछंती करुनांती तार तदारख किए करमर
1: विभिन्न स्तर में से ही स्वयं सहायक गोष्ठी मानू मध्य आमर कम्युनिटी सपोर्ट स्टाफ दीदी मैंने अच्छा आमर प्रत्येक ग्राम से 15 गोटी महिला सहायक गोष्ठी गणे सीआरपी दीदी अच्छा से ग्राम पंचायत स्तर में आमर एमबीके दीदी जहाँ को आम मास्टर बुक कीपर बोली कहते से माने अच्छा बैंक स्तर में समस्त कार्यक्रम में सहयोग करने कागजपत्र सहयोग करें आमर बैंक मित्र दीदी माने अच्छा ता व्यतीत किसी प्राणी मित्र कृषि मित्र आउ कम्युनिटी सपोर्ट स्टाफ एम समस्त आम रोचे जमी आप जो प्रश्न पचारे कि एस एच जी माँ मान खाता पत्र जो सीआरपी दीदी मान क्या कहली से मुख्य दायित्व रोचे कि से जो 5 टी 15 जो जी स्वयं सहायक गोष्ठी अंडर रहिले ठीक से खाता लिखे रिजोल्यूशन केमती करेंगे बैंक को ठीक से डिपोजिट करते ना आउ जहाँ महिला मान कार्यक्रम सरकार आसूची तार बार्ता से माने सही माँ मान पाखे पहुंचाती जो मैंने था जो 5 गोटी स्वयं 10 गोटी स्वयं सहायक गोष्ठी अंडर थापरी मास्टर बुक कीपर से पूरा ग्राम पंचायत स्तर में जिते गोटी एस एच जी मेम्बर अच्छा एस एच जी अच्छा विषय में तार ओवरअल सुपरविजन करती और बैंक मित्र मैंने बैंक रो जो कहली आम ऋण कार्यक्रम सहायता करती व्यतीत प्राणी मित्र कृषि मित्र जो मैंने रही जो लाइन डिपार्टमेंट रही प्राणी विभाग है कि आम कृषि विभाग है सहित जोजोग कर रिलेटेड जो आक्टिविटीज से एस एच जी माँ मान को सपोर्ट करती कहीं साधारण जेहतु गाँव में माँ मैंने जो पैसा नौकरी आप कहे प्रथम कि नहीं किमती कौन करुँच साधारण आम एस एच जी माँ मैंने कुकुड़ा चाष छेली चाष कि चाष से निजर लगे तो से जो सपोर्ट दरकार प्राणी मित्र कृषि मित्र मैंने सपोर्ट करती एमपी के सीआरपी दीदी सब सब कार्यक्रम साहय करते तो ये जोटा कहली कि जो एमपी के सीआरपी दीदी एक तो खाता पत्र लिखिले बैंक को जो खाता पत्र जोगे बारे एप्लीकेशन कम्प्लीट कर देलापर आम ब्लॉक टीम जो मैंने रही ब्लॉक लेवल जो आम मिशन शक्ति कर्मकर्ता मैंने रही बीपीसी बीपीएससीए ओएलएम रु आम बीएलसी बीपीएम्स रही सेटा को बैंक को वीडियो सारा होती डीपीओं एप्लीकेशन दस्खत करें फॉरवर्ड कर दिखती बैंक को बैंक तापर से ऋणटा दि जाए। तो ये जगह दुई प्रकार काम कराए ठीक समय से कहल कि इंटरेस्ट समेसन अच्छी सुध फेरस्त अच्छी तो बैंक मित्र जे रही कि एमबीके सीआरपी दीदी रही है एस एच जी टा ठीक से पैसा बैंक को फेरा कि ना तार दायित्व से जहाँफल आप देखिए बर्तमान जो एनपीए कहे बैंक एस एच जी मान लोन क्षेत्र में यार बहुत कम
0: आर्थिक सहायता दौरान आर्थिक सहायता पाई बहुत गुड़ी

0: आकाशवाणी विज्ञापन कम खर्च रे सारा राज्य रे खेले गुंजरण।
1: आकाशवाणी भवानी पटना समय वर्तमान अपराह्न 5:30 प्रचार करुचु युव श्रोतांक पई कार्यक्रम युववाणी शुणी परिबे ए विज्ञापन परे।
2: QR कोड स्कैन करंतु 5000 रो कैशबैक पांतु बा आज बढ़िया दिनो फसिला UPI पिन एंट्रिंग केवल टंका पठेबा पई उद्दिष्ट
3: RBI कहे
4: सचेतन होंतु सतर्क रहंतु।
5: ओपा चाकरी मिली गोला।
6: अरे बा अभिनंदन एबे बहुत गुडा शॉपिंग।
5: हां ओपा नुवा मोबाइल जीन्स जैकेट
6: रही जा राजकुमार सैलरी पूर्वरो खर्च
5: इंस्टेंट लोन भी त मिलु छी
6: प्रथमे बजट बनेबासी तापरे खर्च कर
5: किंतु ओपा
6: देख रोजगार रो गुटिए भाग संचय कर किंतु पार्टी देबा को ही पड़िबो।
5: हां ओपा पार्टी मोरो बजट तोरो।
3: अच्छा
7: RBI कहे
8: सठिक आर्थिक आचरण रखे अपन को सुरक्षा रो ध्यान।

0: सूचना मूर्छना र कुहकमणि
1: आकाशवाणी आम आकाशवाणी
2: आकाशवाणी भवानीपाटना शुणु हिंदी रे एवं परे परे इंग्रजी संवाद रिले कर प्रचार करुचु आकाशवाणी दिल्ली केन्द्र रु
3: आकाशवाणी समाचार के साथ हूं मैं नवीन सक्सेना।

0: और 12 अन्य पश्चिमी तथा एशियाई देशों ने 2016 के मध्यस्थता निर्णय के आधार पर दक्षिण चीन सागर में चीन के व्यापक दावों को अवैध बताया है। इन 14 देशों के संयुक्त बयान में कहा गया है कि विवादित जल क्षेत्र में क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालने वाली कार्रवाई अस्वीकार्य है। देशों वाले यूरोपीय संघ के बयान में इसे विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय बताया गया है। हालांकि चीन ने निर्णय को खारिज करते हुए कहा है कि यह अमान्य है और इसका कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं है। उसने दोहराया है कि वो इसे न तो स्वीकार करता है और न ही मान्यता देता है। वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप क्षेत्र के समुद्री मार्गों पर निर्बाध और सुरक्षित नौवहन तथा व्यापार जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। पर फिर से हवाई हमले किए। होर्मुज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर ईरान के हमले के बाद किए गए। अमेरिकी सेंट्रल कमान ने बताया कि हमलों में ईरान के लगभग 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। उसके बाद ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले। इस बीच ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ने अगली सूचना तक होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की है। पौधे लगाने के लिए आज व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत उत्तर प्रदेश में आज 35 करोड़ पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से राज्य व्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। चौहान ने कहा है कि टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाना बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने से चिंतित है।
1: वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा, वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के तहत आज उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। यादव ने आज इंदौर में एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य राज्य भर में 21,00,000 पौधे लगाना है। इस अभियान के अंतर्गत 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयां स्थापित करने की भी योजना है। इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से वाहन के ईंधन टैंक में समस्या संबंधी दावे का

0: सीमेंट सुपर ग्रेड सीमेंट 64 वर्ष दृढ़ मूल दुआ चेटिनर सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
1: मन की बात प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
2: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
1: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें। मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
2: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
3: आकाशवाणी भवानी पटना आकाशवाणी जयपुर एवं आकाशवाणी बलांगीर केन्द्र रे एक वर्षर अप्रेंटिस ट्रेनी पाई 11 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିଥିବେ। ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଏବଂ ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯିବ। ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ତାଲିମ ସମୟରେ ମାସକୁ 10,900 ଟଙ୍କାର ବୃତ୍ତି ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଚଳିତ ଜୁଲାଇ ମାସର 19 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ NATS ନାଟ୍ସ ପୋର୍ଟାଲରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସୂଚନାଟି ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେଲା।

0: One, two, three, four.
1: सुनो, चार नियो। अरे, चार नियो माँ।
0: गला।
1: कौन है मिति गानी पकाउ चाहे?
0: अरे खबर कागजरो चारी पुस्ता उल्टे लेनी। स्थानीय खबर कोट्टे भी नहीं।
1: ओहो, अरे बाबा इत्ती कहीं की? आमो रेडियो टा ऑन कलनी? मीडियम वेबरे 248 मीटर तथा 1206 किलोहर्ट्ज जोगे एफएम माध्यम रे 100.3 मेगाहर्ट्ज जोगे बा न्यूज ऑन एआईआर एप माध्यम रे आम आकाशवाणी भवानी पटना ट्यून करो प्रत्येक दिन सकाळ 10टा बजे 10 मिनिट रु 11टा बजे 10 मिनिट जाए स्थानीय खबर आ मनपसंदर गीत कोनी कार्यक्रम।

0: क्रीडायाः उपान्त्यचक्रीयपङ्क्तौ अर्जेण्टीना, इङ्ग्लैण्ड, फ्रांस, स्पेन इत्येतानि च राष्ट्राणि सम्प्राप्तानि इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी भवानी पटना, समय वर्तमान संध्या 6:30। प्रचार करुचु आदिवासी गीत क्रमरे देशिया कंध गीत परिवेषण करछन्ति कस्तूरी माझी एवं साथी।
2: जय

0: ଆକାଶବାଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସବୁବେଳେ।
1: आजी तो पार्टी दरकार प्रथमे चैंपियन सहित सेल्फी उठेबा आइडिया एची पार्टी करिबा चलो पिज्जा पार्टी ये चल तो कार्ड ओपन दे
2: मो कार्ड रो डिटेल्स मु निजे ही भरिबी आरबीआई कहे जे निजर पिन ओटीपी सीवीवी किंबा इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड कहा सहित शेयर करंतु नहीं ऑनलाइन बैंकिंग केवल निजर कंप्यूटर मोबाइल एवं सिक्योर नेटवर्क द्वारा करंतु।
1: बाय गर्ल्स कुआडे जाउ।

आकाशवाणी संबलपुर आंचलिक खबर पढ़ुचन तापस रंजन साहू जुहार पहला मुख्य खबर निशामुक्त ओडिशा गठन लागि खास योजना तैयार कले सरकार केन्द्र सरकार तरफ फेरघाए धारी जिला 36टा उसोर खुचरा दर आषाढ़ मासर अंधार पोखर द्वादशी तिथि पुरी श्रीमंदिर आयोज हो महाप्रभुमानकर राजप्रसाद विजय नीति आउ राये सक्रिय रही दक्षिण पश्चिम मौसुमी आवा सात दिन तक हो पारे वर्षा निशामुक्त ओडिशा गठन लागि सरकार खास योजना तैयार करिछन योजनार अनुमोदन लागि सामाजिक सुरक्षा भिन्नक्षम सशक्तिकरण विभाग एसएसईपीडी तरफ सरकार निके चिठी लिखा जाइछे कार्यक्रम लागि मोट 4 कोटी 62 लाख टंका खर्चा करा जिबा बुलकरि स्थिर करा जाइछे योजना थी विद्यालय स्तरनु मूल करिकरि पंचायत तक सचेतनता अभियान करा जिबा राज्यर 150टा विद्यालय और महाविद्यालय नो निशा विरोधी सचेतनता गण दौड़ पदयात्रा और साइकिल रैली करा जिबा फी ब्लॉक नो निशा विरोधी कार्यक्रम और निशा दरब निरोधी कमिटी गढ़वार के सरकार लक्ष्य रखिछन फी जिल्ला नो 50 जन निशा मुक्त मित्रों को लेकर सचेतनता कार्यक्रम करा जिबा बोलकर जना पड़िछे केन्द्र सरकार 36टा जरूरी उसोर खुचरा दर के फेरघाए धारिज करिछन केन्द्र रसायन और सार मंत्रालय अधीन थिबार जातीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण एनपीपीए तरफ ई बाबदे विज्ञप्ति जारी करा जाइछे ई तालिका थी खास करी उच्च रक्तचाप मधुमेह हृदरोग कर्कट संक्रमण श्वास रोग आखि रोगर चिकित्सा लागि व्यवहार होतबार उसोर दाम के स्थिर रखा जाइछे उसो बनोतबार कंपनी मानकु विज्ञापित 36टा उसोर धारिज दाम तुरती लागू करबार लागि केन्द्र सरकार निर्देश देछन लोकमानकु कम दाम थी जरूरी उसो जुगै देबार लक्ष्य थी केन्द्र सरकारी पदक्षेप नैथिबार जना पड़िछे राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मुकेश महालिंग केन्द्र सरकार को निष्पत्ति के स्वागत करबार सहित रोगी माने कम दाम थी उसो पाई पारबे बोलिकरी कहिछन प्याज जोगाण आंशिक भाव बाधाप्राप्त होइथिबारनु दाम बढ़ीछे बोलिकरी जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र कहिछन गला 15 दिन भितरे प्याजर खुचरा दाम पाखापाखि 20 टंका बढ़ीथिबार मंत्री श्री पात्र कहिछन खास करी रायजे महाराष्ट्रनु प्याज आमदानी करा जाउथिबार बेले सेठाने जबर वर्षा लागि प्याज उत्पादन क्षतिग्रस्त होइछे।

प्रिय टीपी एनओडीएल बिजुली उपभोक्ता आपण जानंती कि एबे 25 वर्ष पई बिजुली बिल चिंतार मुक्ति पीएम सूर्य घर योजना रे मात्र 1875 टंका दे आज्ञा हां मात्र 1875 टंका रे निज छत ऊपर सोलर पैनल बसंतु एवं वर्षक 5000 टंका पर्यंत संचय करंतु आज ही 1800345671 किमा 1912 रे जोगाजोग करंतु।

0: ଫିମ୍ରେନ୍ସ ଟ୍ୟୁନ୍ କରିଛନ୍ତି 100.4 ଆକାଶବାଣୀ ଫିମ୍ରେନ୍ ବୋ କଟକ ଦିଲ୍ ସେ ଦିଲ୍ ତକ୍ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସରର ଏହି ମିଠା ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ।
1: जिला प्रशासन निष्ठापर उद्यम कर
2: जिला उन्नयन समन्वय एवं पर्यालोचना कमिटी दिशा बैठक जिला परिषद सम्मिलन कक्ष में कटक सांसद तथा जिला दिशा कमिटी अध्यक्ष सांसद भर्तृहरि महताब अध्यक्षतार अनुषित होता। बैठक में सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम योजना गुड़िकर अग्रगति संपर्क में श्री महताब
3: 2026 मसीहार ये हूँ द्वितीय दिशा मीटिंग आउ एक मीटिंग सेप्टेम्बर करिबू एवं डिसेंबर मास बेलू चतुर्थ मीटिंग हबो। मानवर सभ्य माने दिशा कमिटी रो से माने विविध प्रश्न पचारी ता भितरे जो छोटी ब्लॉक रे जलसेचन रो सुविधा करा जाई परिबो बोली वाटर रिसोर्सेस डिपार्टमेंट तरफ रु कहगला निर्दिष्ट भाव में कौ पंचायत हम एवं किभली भाव में जलसेचन रो व्यवस्था करा जिवो अंडरग्राउंड टनल जरिया रे पाइप जरिया रे जलसेचन पाई व्यवस्था योजना करा जाई छी ता एक भलो योजना स्वागत योग्य योजना किंतु जेतिकी जल आमे वृतंगरु आनी की मड़ई परिबा जलसेचन पाई ता मध्य टिके चिंतार विषय है छी किंतु प्रशासन तरफ रु लैंड एक्विजिशन को नैकी एवं जो विलेज गुड़ी कर टिके समान को उद्वास्त करा जीवो पुनर्संस्थान करा जीवो ता पाई डिविजन तयारी करबा एभली भाव रे केते गुड़ी कार्यक्रम अछि।
2: भोटर तालिका स्वतंत्र सघन संशोधन चिठा तालिका प्रकाश पाई नयगढ़ जिलार चारिटी निर्वाचन मंडली में पूर्व 7,97,289 मतदाता रही बेले वर्तमान संशोधन प्रक्रिया पर 58,979 जन भोटर नाम बाद दी बाद प्रक्रिया पर वर्तमान जिले में समुदाय भोटर संख्या 7,38,310 जन को ह्रास पाई जिलापा मधुमिता रथ कहते
4: এটা হচ্ছে 5/7/2024 রে আমার টোটাল ইলেকটোরাল যে রয়েছেন্তি সেমানে হেলে 7,97,289 টোটাল ভোটরস তা ভিতরু আমার 7,38,310 পাখাপাখি 93% আমার এনুমারেশন ফর্ম যার আমি রিসিভ করে নিয়েছু এবং 7% যেটা যে ভোটর পার্মানেন্টলি শিফটেড ডুপ্লিকেট যে মানকর আছে সেইতরে আউ 7% রইছে। পলিটিক্যাল পার্টিজ কর মিটিং নেইছিলু যেতরে সমস্ত এআর ও ইআর ও সমস্ত উপস্থিত ছিলে প্রত্যেক পলিটিক্যাল পার্টির ও বি লিডারস এন্ড এজেন্টস উপস্থিত ছিলে।
2: কেন্দ্র আদিবাসী ব্যাপার রাষ্ট্রমন্ত্রী দুর্গাদাস উইকে জগন্নাথ সংস্কৃতির আদিপীঠ কণ্টিলোর শ্রী নীলমাধব জীউঙ্কু দর্শন করে মহানদী তটে অবস্থিত পীঠর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রশংসা করছেন। জেলাস্তরীয় 77তম বন মহোৎসব খণ্ড

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और एक बार हम फिर मौजूद हैं खेल के मैदान का सारा लेखा जोखा लेकर के आपके कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की खेलों के मैदानों की हेडलाइंस पर। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में चीन की गुआओ हान्यू और फ्रांस की क्रिस्टलीना की जोड़ी ने महिला डबल्स का खिताब जीता। पुरुष सिंगल्स के फाइनल में इटली के यानिक सिनर और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेरेव कुछ देर में होंगे आमने सामने। चेकिया की लिंडा नोस्कोवा ने कैलोरीना मुखोवा को हराकर किया अपना पहला विंबलडन महिला सिंगल्स खिताब हासिल किया। इंग्लैंड और गत विजेता

0: अर्जेंटीना ने फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह बनाई। लंदन के लॉर्ड्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को जीत के लिए 457 रन का लक्ष्य दिया। और एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंतिम दिन आज भारत ने 2 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीत करके 16 पदकों के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। सबसे पहले कार्यक्रम को शुरू करते हैं विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के साथ, जो एकदम अंत की तरफ अपने बढ़ चला है और एक के बाद एक किताबों के विजेताओं के फैसले होते जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज चीन की गुआओ हानयू और फ्रांस की क्रिस्टलिना मडलेनोविक की जोड़ी ने महिला डबल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। उन्होंने फाइनल मुकाबले में कनाडा की ग्रैबेला डेबोस्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी को 6-3, 7-5 से हराया। पुरुष सिंगल्स का फाइनल मुकाबला आपसे कुछ देर में इटली के यानिक सिनर और जर्मनी के अलेक्जेंडर जेरेव के बीच में होना है। तो एक तरफ डिफेंडिंग चैंपियन यानिक हैं, जो दूसरी तरफ फ्रेंच ओपन के विजेता जेवरेम हो गए। इससे पहले चेकिया की लिंडा नोस्कोवा ने अपना पहला विंबलडन महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। लिंडा ने सेंटर कोर्ट पर खेले गए खिताबी मुकाबले में अपने ही देश की कैरोलिना मुखोवा पर शानदार जीत दर्ज की। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
1: लिंडा नोस्कोवा ने कल विंबलडन के एक रोमांचक महिला सिंगल्स मुकाबले में कैरोलिना मुखोवा को 6-2, 5-7, 6-3 से हराते हुए अपने करियर का सबसे बड़ा खिताब हासिल किया। दूसरा सेट हारने के बाद नोस्कोवा ने शानदार वापसी करते हुए अंतिम सेट और मुकाबला अपने नाम किया। 21 वर्षीय खिलाड़ी मुखोवा ने पहला सेट हारने के बाद दूसरे सेट में जोरदार वापसी की और सेट 7-5 से जीत कर मैच को निर्णायक सेट तक खींच लिया। हालांकि नोस्कोवा ने अंतिम सेट में फिर से नियंत्रण हासिल किया और अहम को पर संयम बनाए रखते हुए मैच अपने नाम कर लिया। ये नोस्कोवा की पहली विंबलडन खिताब और एक बड़ी ग्रैंड स्लैम जीत है। 21 वर्षीय नोस्कोवा अपनी आदर्श खिलाड़ी और अपने देश के दिग्गज पेट्रा किवतोवा के बाद सबसे कम उम्र के विंबलडन चैंपियन बनी। वहीं पुरुष डबल्स का खिताब फिनलैंड के हैरी हेलियोवारा और हेनरी पैटन की जोड़ी ने जीत कर अपने नाम किया। इस एंग्लो फिनिश जोड़ी ने कल एल साल्वाडोर के मार्सेलो अरेवालो और क्रोएशिया के मेट पाविक को 7-6, 7-6 से शिकस्त दी। इसी के साथ पैटर्न ओपन एरा में 2 विंबलडन पुरुष डबल्स टाइटल जीतने वाले पहले ब्रिटिश पुरुष बन गए। पैटर्न और हेलियोवारा ने इससे पहले साल 2024 में यहां खिताब जीता था और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 की ट्रॉफी भी अपने नाम की थी। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो तमाम खिताब फाइनल हो गए हैं, बस बचा है मेंस सिंगल्स, जो अब से कुछ देर में शुरू होगा दो चैंपियन खिलाड़ियों के बीच। और अब रुख करते हैं फुटबॉल के महासंग्राम फीफा विश्व कप का, जहां इंग्लैंड और गत विजेता अर्जेंटीना ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। कल खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से और अर्जेंटीना ने स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सुनते हैं दोनों मैचों का पूरा हाल।
2: इंग्लैंड ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए नॉर्वे को 1-2 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इंग्लैंड की इस जीत के नायक जूड बेलिंगम रहे, जिन्होंने अतिरिक्त समय में टीम के लिए विजयी गोल दागा। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मैच के 36वें मिनट में एंड्रियास शेल्डरूप ने पहला गोल करते हुए नॉर्वे को 1-0 की बढ़त दिलाई। इसके बाद बेलिंगम ने पहले हाफ में इंजरी टाइम में शानदार गोल दागते हुए स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। दूसरे हाफ में दोनों टीमों ने गोल करने के कई प्रयास किए, लेकिन किसी को भी सफलता नहीं मिली। इसके बाद मुकाबला अतिरिक्त समय में पहुंचा, जहां 93 मिनट में बेलिंगम का जादू एक बार फिर देखने को मिला। उन्होंने मुकाबले का अपना दूसरा गोल करते हुए इंग्लैंड को 2-1 की बढ़त दिला दी, जो अंत तक कायम रखी।
3: And Jude Bellingham made the difference. It has finished. Norway 1, England 2.
2: इससे पहले इंग्लैंड 1966, 1990 और 2018 में सेमीफाइनल में पहुंचा था। 1966 में इंग्लैंड ने खिताब भी अपने नाम किया था। वहीं एक अन्य मैच में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने स्विट्जरलैंड को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। अर्जेंटीना को क्वार्टर फाइनल मुकाबले में शानदार शुरुआत मिली और 10वें मिनट में मिले कॉर्नर पर लियोनेल मेसी ने बेहतरीन क्रॉस दिया, जिसे एलेक्स मैक एलिस्टर ने बिना कोई गलती किए हेडर की मदद से गोल में तब्दील कर दिया। इसके बाद दूसरे हाफ की शुरुआत स्विट्जरलैंड के नाम रही। मैच के 67वें मिनट में टीम ने मुकाबले में वापसी करते हुए स्कोर 1-1 से बराबर कर लिया। स्विट्जरलैंड की ओर से पहला गोल डैन एंटोय ने किया। 90वें मिनट तक स्कोर 1-1 की बराबरी पर रहा। मुकाबला अतिरिक्त समय में चला, जहां 112वें मिनट में अर्जेंटीना के अल्वारेज स्विट्जरलैंड के डिफेंस को भेदने में सफल रहे और टीम को

0: मुकाबले में 2-1 की बढ़त दिला दी। इसके बाद इंजरी टाइम में लोटारो मार्टिनेज ने अर्जेंटीना के लिए तीसरा गोल करते हुए 3-1 से टीम की जीत पक्की कर दी।
1: And now suddenly Argentina with Almada can seal it. Almada, the save, but the follow-up is in. Lautaro Martinez sends Argentina to the semi-finals. Argentina's pursuit of greatness goes on. It is Argentina who move into the final four.
0: अब सेमीफाइनल में 15 जुलाई को अर्जेंटीना की भिड़ंत इंग्लैंड से होगी। नवीन सक्सेना, स्पोर्ट्स स्कैन।
2: अड़तालीस टीमों के साथ इस विश्व कप का अभियान शुरू हुआ था और अब ये आंकड़ा सिमट कर 4 टीमों पे आ चुका है। सेमीफाइनल की दौड़ एकदम स्पष्ट हो चुकी है और इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं विशेष, हमारे सहयोगी विशेष। कौन कौन सी 4 वो टीमें हैं, इंग्लैंड और अर्जेंटीना को अगर हटा भी दिया जाए, बाकी 2 टीमें कौन सी हैं जिन्होंने सेमीफाइनल में जगह बनाई और क्या तस्वीर है आने वाले मुकाबलों की?
3: शक्ति, जो पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा वो फ्रांस और स्पेन के बीच में खेला जाएगा। फ्रांस एक बहुत ही अनुभवी टीम है और विश्व विजेता भी रह चुकी है। वहीं अगर हम स्पेन की बात करें तो ये उनका सिर्फ दूसरा सेमीफाइनल होगा। हालांकि बहुत ज़्यादा दबाव होगा स्पेन के ऊपर, क्योंकि फ्रांस ने 7 बार सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया है, 2 बार उन्होंने खिताब जीता है और 2 बार वो रनर्स अप भी रहे हुए हैं। तो इस तरीके से स्पेन के लिए काफ़ी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। और अगर दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले की बात करें तो वो मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा। दोनों ही टीमें इस विश्व कप में बहुत ही शानदार प्रदर्शन दिखा चुकी हैं, लेकिन अगर बात करें अर्जेंटीना की तो वह 6 बार सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई है उन्होंने और 3 बार विजेता रहे हैं और 3 बार उपविजेता रहे हैं। और सबसे एक दिलचस्प बात यह है कि अर्जेंटीना ने आज तक कभी भी सेमीफाइनल मुकाबला नहीं हारा है, तो इंग्लैंड के लिए ये एक बहुत बड़ी दिक्कत साबित हो सकती है। और हालांकि इंग्लैंड ने भी एक बार विश्व कप अपने नाम किया है 1966 में और तीसरा सेमीफाइनल उनका ये होगा, एक बार वो विजेता भी रह चुके हैं।
2: जी बिल्कुल, तो इंग्लैंड वापस दोहराना चाहेगा। 70 साल का इंतज़ार, तकरीबन 60 साल का इंतज़ार हो रहा है इंग्लैंड के लिए। टीम्स की अक्सर बात होती है कौन कौन से खिलाड़ी इस पर नज़र रहेगी, गोल्डन बूट जो सबसे एक्साइटिंग फेज होता है इस विश्व कप का, कौन सबसे आगे नज़र आ रहा है?
3: शक्ति, इस समय किलियन एम्बाप्पे और लियोनल मेसी दोनों 8-8 गोल के साथ पहले और दूसरे स्थान पर बने हुए हैं, लेकिन एम्बाप्पे ने उनसे मेसी से ज़्यादा असिस्ट किए हैं, इसलिए वह रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। अगर तीसरे और चौथे स्थान की बात करें तो वहाँ बेलिंगम और हैरी केन वो दोनों बने हुए हैं, लेकिन बेलिंगम ने ज़्यादा असिस्ट किए हैं इसलिए वह तीसरे स्थान पर, हैरी केन चौथे स्थान पर हैं। वहीं डेम्बेले जो हैं फ्रांस के उन्होंने 5 गोल के साथ वो 5वें स्थान पर बने हुए हैं।
2: जी बिल्कुल, मात्र गोल का महत्व नहीं है, महत्व उन खिलाड़ियों का भी है जो असिस्ट करके गेंद को गोल के करीब तक पहुँचाते हैं। और अब रुख करते हैं क्रिकेट के मैदान का, जहां लंदन के ऐतिहासिक मैदान लॉर्ड्स पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को एकमात्र टेस्ट मैच में 457 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में तीसरे दिन इंग्लैंड ने ताजा समाचार मिलने तक 2 विकेट पर 19 रन बना लिए थे। इससे पहले भारत ने अपनी दूसरी पारी 7 विकेट पर 341 रन बनाकर घोषित कर दी। भारत के लिए यशिका भाटिका ने सर्वाधिक 113 रन और स्मृति मंधाना ने 70 रन बनाए। इंग्लैंड की पहली पारी 170 रन पर सिमट गई थी और भारत ने इसके आधार पर 115 रन की बढ़त हासिल की थी। भारत के लिए क्रांति गौर ने बड़ी शानदार गेंदबाजी करते हुए इंग्लैंड के 5 खिलाड़ियों को वापस पवेलियन भेजा था और पहली बार वो जो बोर्ड है लॉर्ड्स मैदान का, जहां पर उन खिलाड़ियों के नाम लिखे जाते हैं जो 5 विकेट हॉल हासिल करते हैं, क्रांति गौर का नाम अंकित हुआ है। आइए सुनते हैं उन्होंने इस उपलब्धि पर क्या कहा।
4: को पता चली है कि एक जो नया रिकॉर्ड है वो मैंने करा है, तय कि फैमिली में पहले किसी को कॉल करने का, देन मैंने मेरे बड़े भाई को कॉल किया, देन वो भी बहुत खुश है, देन पूरी फैमिली। देखा जाए आज मैं जहाँ से आई हूँ वहाँ के सारे लोग मुझ पे प्राउड फील कर रहे होंगे। आज थोड़ा सा जब मैं ड्रेसिंग रूम में बैठी तो मैं सोच रही थी उस बोर्ड के साइड देख के, क्या सेकेंड डे है हमारा, क्या जिसमें नाम लिखवाना है मुझे, मैं करके 5 मिनट तक उस बोर्ड के साइड देखी, देन उसके बाद मैं नीचे गई थी। फिर जैसे मैंने 5th विकेट लिया तो जैसे हर एक प्लेयर्स का अचीवमेंट, देन 5 विकेट की जो खुशी होती है वो अलग ही लेवल की थी मेरी।
2: बिल्कुल, और अब आईसीसी के दूसरे हॉल ऑफ फेम की तरफ चलते हैं, जहां भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली, अंजुम चोपड़ा और इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन ने अपना नाम अंकित किया है। इन्हें क्लास ऑफ 2026 का हिस्सा बनाया गया है आईसीसी हॉल ऑफ फेम में। कल इसकी घोषणा की गई एडिनबर्ग में और अब कुल संख्या 125 हो गई है। आईसीसी अध्यक्ष जय शाह ने तीनों पूर्व कप्तानों को बधाई देते हुए कहा कि उनकी उपलब्धियां आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेंगी।
5: भारत के सबसे प्रभावशाली कप्तानों में से एक सौरव गांगुली ने अपने करियर

0: देर के दौरान भारतीय टीम को एक मजबूत टीम में बदला। शानदार बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 113 टेस्ट मैच में 7212 रन और 311 एक दिवसीय मैच में 11363 रन बनाए। बतौर कप्तान भारतीय क्रिकेट के इस दादा ने भारत को वर्ष 2000 में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी और आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2003 के फाइनल तक पहुंचाया। उनकी कप्तानी में टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी 2002 का संयुक्त खिताब भी जीता। इस सम्मान पर प्रतिक्रिया देते हुए सौरभ गांगुली ने कहा कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होना उनके लिए सम्मान की बात है। क्रिकेट के महानतम खिलाड़ियों के बीच मेरा नाम शामिल होना मेरे सबसे यादगार पलों में से एक रहेगा। वहीं शानदार अंतर्राष्ट्रीय करियर के बाद अंजुम चोपड़ा आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली दूसरी भारतीय महिला बन गई हैं। बाएं हाथ के स्टाइलिश बल्लेबाज 1000 वनडे रन बनाने वाली और 100 वनडे मैच खेलने वाली पहली भारतीय महिला थीं। उन्होंने 2002 में दक्षिण अफ्रीका में भारत को उसकी पहली विदेशी टेस्ट जीत दिलाई और आईसीसी महिला विश्व कप 2005 के फाइनल तक टीम के यादगार सफर में अहम भूमिका निभाई। यह सम्मान पाने पर अंजुम चोपड़ा ने कहा कि खेल कूद वाले परिवार में पली बड़ी होने के नाते मैंने क्रिकेट के दिग्गजों और उनकी बड़ी उपलब्धियों के बारे में कहानियां सुनी थी। भारत के लिए खेलने का सपना बहुत कम उम्र में ही मन में बस गया था। इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज और कप्तान केविन पीटरसन को भी उनके शानदार करियर की उपलब्धियों के लिए हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
1: हालांकि एक बुरी खबर भी भारत के लिए इंग्लैंड से आई। इंग्लैंड ने भारत को पांचवें टी20 मैच में साउथहैम्पटन में 56 रन से हरा करके श्रृंखला 4-0 से अपने नाम कर ली है। निशानेबाजी में भारत की नीरू डांडा ने इटली के लोनाटो में आईएसएसएफ निशानेबाजी शॉटगन विश्व कप में महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत करके इतिहास रच दिया है।
2: Well, a great close-up on the cameras, and the cheers go up just off camera. We just caught him there, Pete Wilson, the coach, out of his seat, punch in the air. Still one more shot to go from Carole Cormenier. It's another miss for the French athlete, but the moment that Nehru managed to nail the gold just happened a few moments ago, and you've got a feel for Carole Cormenier. She shot so well, came into this final, made a really good start, a perfect start, actually.
1: तो एक शानदार प्रदर्शन और एक बेहतरीन खिलाड़ी, पहली ट्रैप खिलाड़ी बनी है भारत के लिए महिला वर्ग में, जिन्होंने भारत के लिए पदक जीता, वो भी स्वर्ण पदक। और अब रुक करते हैं एथलेटिक्स का, जहां चीन के ऑर्डोस में खेली जा रही एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंतिम दिन आज भारत ने 2 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही भारत ने अपना शानदार अभियान 16 पदकों के साथ समाप्त किया, जिसमें 3 स्वर्ण पदक शामिल थे। और अब संडे का दिन है तो बात फिटनेस की जाए, यानी फिट इंडिया अभियान के अंतर्गत आज देश में संडे ऑन साइकिल का आयोजन किया गया। इसके 81वें संस्करण में आज नई दिल्ली में चार्टर्ड अकाउंटेंट और भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी सुमन देवी ने हिस्सा लिया। ये सुनते हैं सुमन देवी ने इस बारे में क्या कहा।
3: ये बहुत अच्छी चीज हो रही है संडे को, ये फिट इंडिया के साइकिलिंग बहुत जरूरी है हेल्दी रहने के लिए, तो मैं चाहती हूँ कि ये चीज को कंटिन्यू रखे और अपने सबको मैं कहना चाहूंगी कि ये सब लोग कुछ न कुछ वर्कआउट करते रहे।
1: जी बिल्कुल, और उन्होंने कहा कि साइकिलिंग जो है वो फिटनेस के लिए, पर्यावरण के लिए और तमाम पहलुओं से बेहद लाभदायक होती है। और फिट इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर उत्कर्ष सक्सेना ने भी फिट इंडिया संडे की सराहना की है और कहा कि ये स्वस्थ भारत बनाने के लिए एक सकारात्मक कदम है। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी इस कार्यक्रम में। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप अपनी राय sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए, नमस्कार।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं नवीन सक्सेना। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत पर हमले के बाद पश्चिम एशिया क्षेत्र में तुरंत तनाव कम करने का आह्वान किया। अमरीका ने कहा होर्मूज जलडमरू मध्य सभी जहाजों के लिए खुला और अमरीकी सेना नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैयार। वियतनाम में नौका दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीयों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंचे, उन्हें जल्द से जल्द भारत लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण में नया इतिहास रचा। चीन में अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 3 स्वर्ण सहित कुल 16

0: पदक जीते और लंदन में विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स फाइनल में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर ज़वरेव का मैच जारी। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और बिना रुकावट के नौवहन और वाणिज्य को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
1: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा रणनीतिक जलमार्ग को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद अमरीकी सेंट्रल कमान ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य सभी वैध आवागमन चाहने वाले जहाजों के लिए खुला है। ये बयान अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संवाददाता सम्मेलन में ये कहने के बाद आया है कि होर्मुज जलडमरू मध्य वाणिज्यिक जहाजों के लिए खुला है। अमरीकी सेंट्रल कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि जलडमरू मध्य से समुद्री यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और अमरीकी सेनाएं ईरानी आक्रामकता, उत्पीड़न, धमकियों और मनमानी घोषणाओं के बावजूद नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैनात हैं। उन्होंने कहा कि ईरान का होर्मुज जलडमरू मध्य पर कोई नियंत्रण नहीं है और सुरक्षित पारगमन मार्ग खुले हैं। इससे पहले ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर हमला करने और उसे आग लगाकर चालक दल को जहाज छोड़ने के लिए मजबूर करने के बाद अमेरिका ने ईरान पर नए हवाई हमले किए। वियतनाम में नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने बताया कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को यथाशीघ्र भारत भेजा जाएगा। हो ची मिन शहर स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास वियतनाम के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। इस नाव में 32 भारतीय पर्यटकों सहित 36 लोग सवार थे। दुर्घटना में घायल 16 भारतीय स्वदेश लौट रहे हैं। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति का वियतनाम के फूकवाक स्थित अस्पताल में उपचार चल रहा है। इस बीच वियतनाम के प्रधानमंत्री ली मिन होंग ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और 12 अन्य पश्चिमी तथा एशियाई देशों ने 2016 के मध्यस्थता निर्णय के आधार पर दक्षिण चीन सागर में चीन के व्यापक दावों को अवैध बताया है। इन 14 देशों के संयुक्त बयान में कहा गया है कि विवादित जल क्षेत्र में क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालने वाली कार्रवाई अस्वीकार्य है। 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के बयान में इसे विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय बताया गया है।
2: इन बयानों में 12 जुलाई 2016 को हेग में संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन के तहत स्थापित न्यायाधिकरण के मध्यस्थता निर्णय का जिक्र किया गया है। उन्होंने इस ऐतिहासिक निर्णय को अंतिम और कानूनी रूप से बाध्यकारी बताया है। हालांकि चीन ने इस निर्णय को खारिज करते हुए इसे अमान्य बताया। उसने कहा कि इसका कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं है। चीन ने दोहराया कि वह इसे ना तो स्वीकार करता है और ना ही मान्यता देता है। एक वर्ष पहले विवादित जल क्षेत्र में तनावपूर्ण गतिरोध के बाद दक्षिण चीन सागर तनाव का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। यहां चीन और फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान के बीच बार बार क्षेत्रीय गतिरोध होते रहते हैं। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देशभर में पौधे लगाने के लिए आज व्यापक अभियान चलाया गया। इसके तहत उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नया इतिहास रचा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लिंक एक्सप्रेसवे के निकट नीम, पीपल और बरगद के पौधे लगाकर राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया।
3: कार्यक्रम के दौरान जन भवन की नक्षत्र वाटिका में कुल 29 चंदन के पौधे

0: लगाए गए। पौधारोपण अभियान में जन भवन के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ साथ बालिका गृह की लड़कियों ने भी हिस्सा लिया। इस अभियान में कई मंत्रियों और जन प्रतिनिधियों के साथ साथ स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्यों, विभिन्न विभागों के लोगों, विद्यार्थियों और आम जनता ने भी भाग लिया। ये अभियान राज्य के 75 जिलों में चलाया गया। राज्य ने इस वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर 5 करोड़ से ज्यादा पौधे भी लगाए। उत्तर प्रदेश में इस साल अब तक कुल 40 करोड़ 29 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं। 27 विभागों के आपसी सहयोग से चलाया गया, जिसमें वन विभाग ने 15.5 करोड़ पौधे लगाने का सबसे बड़ा लक्ष्य पूरा किया। लखनऊ से सुशील तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से रेशमा तिवारी।
1: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज इंदौर में एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य राज्य भर में 21 लाख पौधे लगाना है। इस अभियान के अंतर्गत 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयां स्थापित करने की भी योजना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाना बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने से चिंतित है।
2: जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, जलवायु संकट गहराएगा और ये नुकसान 2100 तक बढ़कर जीडीपी में जो कमी हो रही 20% तक पहुंच सकता है। आप कल्पना कीजिए क्या होगा। ये आर्थिक संकट इतना बड़ा होगा कि इसको मुकाबला करना फिर कठिन हो जाएगा। और इसलिए वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में नगर निगम के 405 करोड़ रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के तहत आज उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। हमारी संवाददाता ने बताया कि गृहमंत्री ने 2029 के चुनाव तक निर्वाचन क्षेत्रों में पौधे लगाने की गतिविधि को 20% तक बढ़ाने की दीर्घकालिक पर्यावरणीय रूपरेखा पर बल दिया।
3: गृह मंत्री ने बरगद, पीपल, जामुन और अर्जुन जैसे स्वदेशी पौधे लगाने पर जोर दिया, जिससे शहर के तापमान में 5% की कमी आएगी और भावी पीढ़ियों के लिए एक रहने योग्य पर्यावरण सुनिश्चित होगा। उन्होंने पर्यावरण स्थिरता में योगदान देने के लिए हर घर और आवासीय सोसाइटी से सोलर रूफटॉप अपनाने का भी आह्वान किया। इस पर्यावरण अभियान के तहत आज 101 नए ऑक्सीजन पार्क का भी उद्घाटन किया गया और उनकी जानकारी देने वाली एक विशेष ई बुक भी जारी की गई। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए AMTS और BRTS के बेड़े में आज 333 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की गई, जिससे अहमदाबाद BRTS देश का पहला 100% इलेक्ट्रिक और शून्य प्रदूषण वाला बेड़ा बन गया है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत ने चीन के ओर्डोस में खेली जा रही एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना अभियान 16 पदकों के साथ संपन्न किया। इनमें 3 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत ने आज अंतिम दिन 2 स्वर्ण और 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। भारतीय महिला टीम ने 4x400 रिले में स्वर्ण पदक जीता, जबकि भाला फेंक में भारत के आनंद सिंह ने स्वर्ण और शिवम लोहाकरे ने कांस्य पदक हासिल किया। भारतीय पुरुष टीम ने 4x400 रिले और महिला टीम ने 4x400 मीटर रिले में रजत पदक जीते। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का फाइनल मुकाबला इटली के यानिक सिनर और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव के बीच जारी है। इससे पहले चीन की गुआओ हानयू ने और फ्रांस की क्रिस्टीना मिलाडेनोवा की जोड़ी ने महिला डबल्स का खिताब जीता। उन्होंने फाइनल्स में कनाडा की गैब्रियला डाब्रोवस्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी को 6-3, 7-5 से पराजित किया। उधर लंदन के लॉर्ड्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को एकमात्र टेस्ट में 457 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में तीसरे दिन इंग्लैंड ने ताजा समाचार मिलने तक 3 विकेट पर 23 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने अपनी दूसरी पारी 7 विकेट पर 341 रन बनाकर घोषित कर दी। इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 170 रन की बना सकी। सरकार ने इथेनॉल

और मिश्रित पेट्रोल से वाहन के ईंधन टैंक के समय समस्या संबंधी दावे का खंडन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट पर वायरल फर्जी तस्वीर में ऐसा दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को झूठा बताया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि तेल विपणन कंपनियों द्वारा आपूर्ति किया जा रहा E20 पेट्रोल भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानकों के अनुरूप है। निर्धारित मानकों के अनुरूप होने पर इथेनॉल और पेट्रोल पूरी तरह से घुलनशील हैं। नई पीढ़ी के प्रशासनिक और ई गवर्नेंस सुधारों के विषय पर दो दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन कल से मेघालय के शिलांग में शुरू हो रहा है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा मेघालय सरकार इसका आयोजन कर रखे हैं। ये सम्मेलन देशभर के नीति निर्माताओं, प्रशासकों, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों और शासन से जुड़े लोगों को एक मंच पर लाएगा ताकि वो लोक प्रशासन और डिजिटल गवर्नेंस के भविष्य पर चर्चा कर सकें। सम्मेलन में 300 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने निर्माण क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल तकनीक अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के 172वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसी भी भवन या संरचना के निर्माण के दौरान उसकी मजबूती से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वो भारतीय उद्योग जगत के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भी करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और टिकाऊ विकास पर विशेष ध्यान देते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल कल स्पेन पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 16 तारीख को आकाशवाणी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम का 136वां एपिसोड होगा। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। वो नरेंद्र मोदी ऐप या MyGov ओपन फोरम के माध्यम से भी ऑनलाइन अपने सुझाव दे सकते हैं। नागरिक 1922 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर और SMS से प्राप्त लिंक का अनुसरण करके सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव भेज सकते हैं। आगामी एपिसोड के लिए सुझाव इस महीने की 24 तारीख तक स्वीकार किए जाएंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया मंगलवार को देशभर में लगभग 668 करोड़ रुपए लागत वाली 7 कर्मचारी राज्य बीमा ESI स्वास्थ्य परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत पर हमले के बाद पश्चिम एशिया क्षेत्र में तुरंत तनाव कम करने का आह्वान किया। अमरीका ने कहा होर्मुज जल डमरू मध्य में सभी जहाजों के लिए खुला और अमरीकी सेना नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैयार। वियतनाम में नौका दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीयों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंचे, उन्हें जल्द से जल्द भारत लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण में नया इतिहास रचा। चीन में अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 3 स्वर्ण सहित कुल 16 पदक जीते और लंदन में विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स फाइनल में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर ज़ेवरेव का मैच जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: us an inspiration from legendary maestros. A multifaceted performer and composer, Kumar explores khayal, thumri, Hindi bhajans, Marathi abhangs, Kannada dasa sahitya, Kannada vachana sahitya, and many other traditions. An A-grade artist of Akashvani and Doordarshan, Kumar has performed throughout the country in various prestigious concerts.
1: आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ तबले पर पंडित सातलिंगप्पा देसाई कल्लूर और हारमोनियम पर श्री पंचाक्षरी हिरेमठ साथ दे रहे हैं। श्री कुमार मरडूर अपने कार्यक्रम का प्रारंभ राग छायानट से कर रहे हैं। विलंबित झुमरा इनायत हो, द्रुत तीन ताल एरी मालनिया, द्रुत तीन ताल तराना।
0: In tonight's program, he is accompanied on the tabla by Pandit Satlingappa Desai Kallur and on the harmonium by Shri Panchakshari Hiremath. Shri Kumar Mardur will begin his vocal recital with Raag Chayanat, Vilambit Jhumra Inayatahu, Drutteen Taal Eri Maliniya, followed by Tarana in Drutteen Taal.

0: अभी आपने सुना राग छायानट। अब श्री कुमार मल्डूर प्रस्तुत कर रहे हैं राग बागेश्री। विलंबित एकताल सकी मना लागिना, द्रुत एकताल बिनती कराता।
1: You just heard राग छायानट। श्री कुमार मल्डूर will now present राग बागेश्री। विलंबित एकताल सखी मना लागेना, द्रुत एकताल बिनती करता।

0: अब तक आप सुन रहे थे राग बागेश्वरी। इसी के साथ आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा संपन्न होती है, जिसमें आप सुन रहे थे श्री कुमार मरडूर का गायन। आपके साथ तबले पर पंडित सातलिंगप्पा देसाई कल्लूर और हारमोनियम पर श्री पंचाक्षरी हिरेमठ साथ दे रहे थे।
1: दैट वॉज राग बागेश्री। विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ टुनाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा, in which you were listening to a vocal recital by Shri Kumar Maradur. He was accompanied on the tabla by Pandit Sathlingappa Desai Kallur and on the harmonium by Shri Panchakshari Hiremath.
0: यह कार्यक्रम आकाशवाणी के धारवाड़ केंद्र में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: This program was earlier recorded at Akashvani Dharwad and relayed from Akashvani Delhi.
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। भारत ने कहा है कि होर्मुज जल डमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों से मुक्त और बिना रुकावट के नौवहन और वाणिज्य जहाजों को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
4: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है, ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
3: ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा रणनीतिक जलमार्ग को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद अमेरिकी सेंट्रल कमान ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य सभी वैध आवागमन चाहने वाले जहाजों के लिए खुला है। ये बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संवाददाता सम्मेलन में ये कहने के बाद आया कि होर्मुज जलडमरू मध्य वाणिज्यिक जहाजों के लिए खुला है। अमेरिकी सेंट्रल कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जल डमरू मध्य से समुद्री यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और अमेरिकी सेनाएं ईरानी आक्रामकता, उत्पीड़न, धमकियों और मनमानी घोषणाओं के बावजूद नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैनात हैं। ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। ईरान ने जॉर्डन में एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर भी हमला करने का

दावा किया। इस तनाव ने क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा बाजारों को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। वियतनाम में नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन्ह शहर पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने बताया कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरा होने के बाद पार्थिव शरीरों को यथाशीघ्र भारत भेजा जाएगा। हो ची मिन्ह शहर स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास वियतनाम के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। इस नाव में 32 भारतीय पर्यटकों सहित 36 लोग सवार थे। दुर्घटना में घायल 16 भारतीय स्वदेश लौट रहे हैं। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति का वियतनाम के फुसकॉक स्थित अस्पताल में उपचार चल रहा है। इस बीच वियतनाम के प्रधानमंत्री ली मिन हंग ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। देशभर में पौधे लगाने के लिए आज व्यापक अभियान चलाया गया। इसके तहत उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नया इतिहास रचा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लिंक एक्सप्रेसवे के निकट नीम, पीपल और बरगद के पौधे लगाकर राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की लागत की विरासत परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के तहत आज उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज इंदौर में एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य राज्यभर में 21,00,000 पौधे लगाना है। इस अभियान के अंतर्गत 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयां स्थापित करने की योजना है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कल एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य वैश्विक क्षमता केंद्र, डेटा केंद्र और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग मेघालय सरकार के सहयोग से कल शिलांग में नेक्स्ट जनरेशन प्रशासनिक और ई गवर्नेंस सुधार विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। भारत ने चीन के ऑर्डोस में खेली जा रही एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना अभियान 16 पदकों के साथ संपन्न किया। इनमें 3 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत ने आज अंतिम दिन 2 स्वर्ण और 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।